अपने भव सागर से पार उतारे। जब जो जावे इनके द्वारे पापी से पापी भी तारे, भव सागर से पार उतारे।

फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसल फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

जब भय बूढ़े ओ जब धन ढूंढे मिले कामार। बाल भय भूरे गर्भ भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्भ भौ चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी में मिल गई। खाल सुकड़ गई हड्डी।

मोहे कभौं श्याम मोहे शंकर

उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

कहानी सब जग में हो गई हो सीता। मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

हरि को लइयो। हाँ ई कलयुग में हरि नाम से जन्म सफल कर लइयो मन से बजलो रे हरि।

गरब करे थे पोत नान फिर देख लाए पान कारे भजन।

दिलाए। अरे करब करे ते वाले ने तो पाप पा।

Claro.

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और जैसा कि श्रोता साथियों आप जानते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं राजेश जी, जो कि यहाँ पर आके उन्होंने बहुत सारे गाँव में विजिट किया है। और खास तौर पर जब हमारे पानी बचत की बात आती है या क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे आप स्टूडियो में पहली बार आपने यहाँ पर आए हैं, तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर।
1: धन्यवाद
0: सर। जानना चाहेंगे आपसे कि जो क्लाइमेट यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे खासतौर पर खेती पर बहुत ज्यादा प्रभाव और खासतौर पर किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या बातें हैं जो हमारे समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, किस तरीके से हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम किस हद तक हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं सर?
1: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस रेडियो के माध्यम से। जहां तक आपने जो प्रश्न किया, बहुत आज की जो परिस्थितियां हैं और खासतौर पर बुंदेलखंड में जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रख करके देखें तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर हम किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और उसकी जो मुख्य वजह है कि हम यदि कुल बारिश में देखें, यदि वर्षा का आंकड़ा देखें, तो कभी कभी हमको लगता है कि आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है कि बारिश में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जहाँ तक कुछ सालों की जब रेनफॉल की आंकड़ों को देखें तो वो अंतर नजर नहीं आता। बट अंतर क्या है कि जब पानी की जरूरत है तब पानी नहीं गिर रहा है
0: जी।
1: और एक साथ पानी बहुत तेजी से गिर रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारी फसलें हैं उसका उसको समय समय पे पानी की जरूरत महसूस होती है। और असमय पानी का गिरना ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सब सामना कर रहे हैं। और जो समय पे पानी नहीं गिरने की वजह से फसलों के जो प्रोडक्शन है, जितना उत्पादन होना चाहिए उस उत्पादन में भी कमी हो रही है। और कभी कभी तो पूरी पूरी जो हमारी फसल है वो पूरी फसल, और जैसे कि मैं अभी इस साल आया हूँ कि पानी की वजह से पहली फसल जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल लगभग 70-80% फसल इस साल हुई नहीं। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है कि इस साल अतिवृष्टि हो गई। तो पानी को जितना जिस जगह पे होना चाहिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर बहुत ज्यादा यदि कम या बहुत ज्यादा वर्षा जो है वो इस फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और यही वजह है कि हमारे किसान भाई इस साल, अभी हम मैं दो दिनों से आपके गांव में ही था खासतौर पे, तो पुरुष जो हैं वो सारे बाहर चले गए क्योंकि गांव में अभी कोई किसान होकर के भी किसानी का काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई फसल नहीं है
0: जी।
1: तो इस जो है ये बहुत बड़ा हमारे जो कृषि प्रधान देश के नाते, यदि किसानी का जब समय हमारा खरीफ की फसल को यदि हमारे इतना बड़ा क्षेत्र नहीं ले पाएगा तो सोचिए कि आगे जाकर के जो मैं अन्न की जितनी जरूरत है उसमें कितनी बड़ी। तो मेरा ये मानना है ये दो दिनों के इसमें कि छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि हम करें तो शायद ये जो गंभीर समस्याएं हमारा किसान भाई जो सामना कर रहे हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमें ऐसी फसलें लगाने की जरूरत है जो कि बहुत कम वर्षा में भी सहन कर सके, और थोड़ी अतिवृष्टि होती है तब भी वो फसलें हमें, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे ज्वार
0: जी।
1: तो ज्वार एक ऐसी फसल है जो बहुत कम पानी होता है तब भी वो होती है
0: जी।
1: और सामान्य बारिश में तो वो अच्छी होती है, बट अतिवृष्टि के समय भी ज्वार की फसल, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसको कि हमें कुछ मात्रा में उसको भी हमें, तो दो तीन तरह की हम फसलें लें

0: उत्पादन है वो कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि हमारा उत्पादन ना आए। तो फसलों का चयन हम ऐसा करें जो इस तरह की। तो इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो है मैं वाटरशेड के जो काम है, जो जल संरक्षण के कार्य है, उसको करने की भी हमको आवश्यकता है। और खास तौर पे जल संरक्षण में हमें दो तरह के उपाय, जैसे अभी आजकल अतिवृष्टि भी होने लगी है, तो हमें वो भी उपाय करने हैं कि पानी को जब ज्यादा गिर जाए तो कैसे वो सुरक्षित हमारे खेत से बाहर निकल जाए, और जब पानी हमें कम चाहिए या जब मीडियम हमारी वर्षा हो रही है उस समय पानी को हम कैसे संरक्षण करके रखें, ताकि थोड़े समय का यदि उसमें अंतराल में पानी गिरता है तब भी हमारी फसल में जो मॉइस्चर है जमीन की उसी से उत्पादन में कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा भी और भी जो हमारे गांव की जितनी संरचनाएं हैं उसको हम समय समय पे उसकी मिट्टी निकालते रहें, ताकि उसका जो हमारा पानी का जो स्टोरेज एरिया है, जो संग्रह क्षमता है, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। साथ ही साथ हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर के अच्छे से योजना बनाएं और उन योजनाओं में अधिकतर हम पानी को संग्रहित करने के काम को जोड़ें। और साथ ही साथ हम ये पूरा ध्यान रखें कि खेती में हम पूरा ये ध्यान रखें कि हमारे गांव में कितना पानी गिरता है, तो उस पानी के हिसाब से क्या हम फसल लगा रहे हैं। यदि पानी के हिसाब से नहीं है तो हमें क्या उपाय करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत ही हमारे श्रोताओं को, हमारे समुदाय के लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से विचार करने के लिए विमर्श कर दिया है कि किस तरीके से हमें अपनी खेती में बदलाव करना चाहेंगे। चूंकि आखिरी सवाल हमारे मन में चल रहा था, हमारी जिज्ञासा थी कि आपसे पूछें, क्योंकि आप देश के कई जगह आपने भ्रमण किया है, बहुत सारी खेती में बदलाव देखे भी हैं। चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में और हमारी सरकार भी कह रही है कि मोटे अनाज फिर से करना चाहिए, खेती में लाना चाहिए, आपका क्या मानना है कि इस क्षेत्र में किस तरीके से मोटे अनाज को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए, किस तरीके से वो मोटे अनाज पर जाए?
0: बहुत बड़ा सवाल आपने रखा है, और अभी देखें कि पूरा स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा हमारा खान पान का संबंध है। और हमारे देश में ये जो मोटे अनाज की आपने सवाल किया
1: जी,
0: तो यही अनाज हम खा रहे थे, बट हमने ये बदलाव कब से शुरू किया, जब से हरित क्रांति इस देश में आए।
1: बिल्कुल।
0: तो 1970 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो पंजाब हरियाणा ये जो हमारा गंगा नदी का एरिया है
1: जी,
0: इस क्षेत्र में दो फसल आई, गेहूं और चावल।
1: चावल
0: तो ये जो दोनों फसल है ये जो है हमारे शरीर के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से ये किसके लिए अच्छा था
1: जी,
0: जो मेहनत करते
1: जी।
0: बट आज हमारे जो शहर में खास तौर पे जितने लोग हैं या गांव में भी ऐसे लोग हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करते, कोई स्कूल का टीचर है या कोई दुकान पे बैठता है, तो जिसका शारीरिक श्रम नहीं है
1: जी,
0: उनके लिए गेहूं और चावल जो है वो कहीं से भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको पचा पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा श्रम करने की जरूरत है। और मोटा अनाज जिसकी आपने बात कही कि मोटा अनाज ऐसा अनाज है जिसका बहुत जल्दी हमारे शरीर में पचता है, और उससे जो आजकल की जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे हम कहते हैं कि हाई बीपी है या शुगर है, ये दो आम बीमारियां पूरे भारत में फैली हुई है
1: जी।
0: तो ये दोनों बीमारियों से यदि हम छुटकारा चाहते हैं तो सबसे बड़ा है कि मोटे अनाज, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। सबसे बड़ी चीज खासतौर पे बुंदेलखंड की बात कहूं कि मोटा अनाज शरीर के लिए तो अच्छा है, बट ये सबसे कम पानी की जरूरत इसमें महसूस होती है। तो यदि हमें बुंदेलखंड में, और हम माने कि बहुत अच्छे से हमारे दूसरी जनरेशन भी खेती का काम करें, खेती ना छोड़ें, तो हमें मोटे अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन, चाहे वो रबी का सीजन, खरीफ का सीजन हो या रबी का, और यदि हम तीसरी फसल भी लेना चाहते हैं।

0: तो हम मोटे अनाज की ओर जाएं,
1: बिल्कुल सर
0: ताकि हमारे देश की अन्य सुरक्षा भी हो
1: जी
0: और हमें जितना पानी हमारे पास है
1: जी
0: उसी पानी में, और ये नहीं, ये केवल बुंदेलखंड नहीं, जहां भी पानी की समस्या है वहां पे मोटे अनाज पे ही हमें जाना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत आपने बता दी है। चूंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, तो हम आग्रह करेंगे कि जब भी आपसे हमारी मुलाकात हो, चाहे वो फोन के माध्यम से या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका भ्रमण हो, तो आप जरूर आइएगा इस विषय को लेकर। चूंकि हम ऐसे विशेषज्ञों को चयन कर रहे थे कि मोटे अनाज पर कम से कम बोल सके, बहुत सारे लोगों से हमने सर टॉक की है, तो बहुत ही कम लोगों को इस तरीके के बारे में जानकारी है। चूंकि मोटे अनाज को लेकर लोग पूछते भी हैं, जब कम्युनिटी के पास या समुदाय के पास हम लोग जाते हैं, मोटे अनाज पर उनसे आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में हमें मोटे अनाज पर जाना चाहिए, लेकिन समस्या यही रहती है कि ना तो उसका बाजार है और ना ही करने का जो तरीका है वो लोग भूलते चले गए, चूंकि नई जनरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने हमारे डॉक्टर राजेश वर्मा जी को सुना, बड़े अच्छे उन्होंने अनुभव अपने बयां किए हैं। साथ साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर बड़े विस्तार से हमारे श्रोता साथियों को बताया है। साथ में मोटे अनाज को लेकर भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि किस तरीके से हम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, बड़े विस्तार से इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों को ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी, और ख़ास तौर पर ऐसी ऐसी जानकारी जो हमारे श्रोता साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। हम कोशिश करते हैं उन जानकारियों को कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी का, जिन्होंने समय निकालकर इस बुंदेलखंड क्षेत्र में दो दिन विजिट किए और कई गांवों का भ्रमण भी किया है, क्योंकि ये भारत के कई जगहों पर जाकर इन चीज़ों पर देखते हैं, बातचीत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में रेडियो बुंदेलखंड में आए और उन्होंने अपनी बातचीत को रखा है। धन्यवाद देना चाहते हैं साथियों। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम शुभ कल कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से अगर आप हमें अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा देगला के पास ओरछा। और हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, और उन्होंने बहुत मधुर आवाज में अपने एक गीत को प्रस्तुत किया है, उस गीत को हम सुनते हैं उनकी ही आवाज में। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं, तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी

0: जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाए, कैसे बनाए, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए सर?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है। बिल्कुल, बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आपके पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन मैं आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल है, छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहाँ देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो है अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में ही हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
0: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे

0: जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खास तौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से
1: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है।
0: जी
1: मैं इस बात पर आने ही वाला था।
0: जी
1: हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है,
0: जी
1: हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निमाड़ में हमारा खंडवा परिसर है। जो और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में है, और रेडियो करमवीर भी है,
0: जी
1: तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स, जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है, मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन हैं, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे, और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास, 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स

पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वर्ड्स को, क्योंकि ये कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए।

0: कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है। अगले तीन हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है। और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ। और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर, इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें। ये
0: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत है, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है। माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है। और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी, वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है। तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है। अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त संगे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निशुल्क आयोजित कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर,
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ। और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूंचाओ कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नू रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना कैरियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

पिता से वो आत्मा कह रही है, वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं। अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

0: धक लेती है।
1: कहने लगी अगर मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र कपड़े नहीं होते तब भी मैं फटे पहनकर अपना लेती। और कहा
0: अपना लेती कठिन, अपना लेती कठिन, कंठ को की गली बिलखे ले ही मौत दे।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपना मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन उन्हें एक महिला से बात कर रहे थे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसा सफर रहा है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाना कि भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उन्हें देखो भी है तो या नहीं देखो तो, क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जाते, पहला मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन ने देखो कि जितनी भी कहानी अपन ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनू ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या को के जैसे कि जो मानदान रथ हैंगे भी और देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनू जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज के ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: अम्मा?
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं?
1: हाँ।
0: क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहे।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ।
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में खूब है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते हो?
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम
1: हो? वहाँ पे तो चौका वासन करते सब करते हो। जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते हो और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा।
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ,
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा।
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये 10 रुपये दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हम पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलते ही खाते रहे।
0: हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, बस ये खेल खेलते थे। और
0: अच्छा,
1: चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा।

0: ये साउंड को मुझे खेला चपेटा कलर।
1: अच्छा अच्छा
0: जी खेला है।
1: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ जैसे खेलत में गीत, गीत सुनाओ।
0: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
1: अच्छा गीत ही नहीं आते पहले तो गाती नहीं हो आप?
0: अबे मैं भूल गया तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
1: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही है लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
0: नहीं बुढ़ापो का नहीं है।
1: तो कौन सा गीत गाती है?
0: कौन नहीं गाते हैं
1: आप बता दीजिए। अच्छा आपकी सहेली कौन कौन आती?
0: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए। अब सहेलियन को जाने कहाँ कहाँ गई को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके। कोई की कहीं शादी हो गई कहीं की कोई की कहीं हो अपने अपने घर चली गई सब।
1: अब मिलती हूँ आप लोग?
0: हाँ एन मिल जाते
1: हो जाते
0: कभी कभी इकट्ठे हो जाता खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता
1: है। अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी थी? मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलाती थी?
0: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी हती सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहरते और फिर आके पहरते और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते ये पहन लेते और हम तुमने फिर आके दे रही तो भी पहन लेंगे और यही पहरा होता।
1: अच्छा जी मतलब कोनो अलग से नहीं है?
0: कोनो अलग से नहीं है। तो
1: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें आपकी शादी कितनी उम्र में हुई?
0: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन कितने उम्र में हमारी भाई आती
1: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
0: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी
1: बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा जी से आपकी शादी हो रही थी आपने देखा
0: था
1: पहले से? देखा
0: था नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते पहले ना को मोड़ी देखा तो ना को मोड़ा देखा था।
1: अच्छा
0: देख से तो आते ही हमारे बाप माताई ने 8-9 साल के साथ हम 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे 9 साल की शादी कर रही थी। अच्छा। तो जिन दिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने। बोली तो मैं 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो 500 चुका उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे।
1: अच्छा
0: तो वही बताई गई थी कई मत
1: 500 रुपया में ब्याह होगा
0: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पन्नो आती है देखे उन लोगों ने और धारा दे रहे वैसे ही के बिटिया को पन ब्याह हो रहा पन्न में दे दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: ऐसे हमारा ब्याह होगा।
1: जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल गए राधापुर में भाई है
0: ना? हाँ राधापुर
1: में ससुराल है आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी जैसे पहले दिन तेल मंडप
0: पहले पहले मंडप तेल भाव फिर मंडप भाव फिर टीका भाव।
1: अच्छा 3 ही दिन को ब्याह हो
0: तो? हाँ 3 दिन को हो तो।
1: बारात 3 दिन मिली रही थी
0: नहीं एक ही दिन
1: नहीं
0: 3 दिन मिली रही थी बारात
1: तेल वाला दिन आ जाती
0: नहीं ब्याह के टीका के दिन।
1: अच्छा।
0: और फिर भावर मावर बराती फिर वो दिन छोड़ी जाती बारात दूसरे दिन
1: जाती
0: हमारी जयमाला नहीं डरी बहन हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
1: अच्छा।
0: और जब तुम जो हुत बल्लाल बाको बिलाई।
1: अच्छा जो सब पहला तो मतलब
0: जयमाला नहीं
1: मिली थी
0: क्या सो मड़वा की तरह सीधो ऐसे ही मड़वा जयमाला नहीं लड़का मड़वा चावल मार दे।
1: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कुछ बताओ?
0: नहीं बता हमें नहीं बता।
1: अच्छा चावल को
0: कुछ पता ही नहीं कैसे काल रहे थे आप तो मड़वा के खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर
1: भावरे कहाँ चढ़ा तो आप
0: हमें पेज ना चढ़ी थी 1 किलो के वो खंगवज्जा
1: 1 किलो की पेज
0: ना हाँ 1 किलो के पेज ना वो खंगवज्जा और जो इतने पैर थे पहने थे
1: बाजू बंद
0: हाँ बेचारे थे।
1: अच्छा तो
0: अब रखे हूँ बहन की बात
1: छह
0: लड़का होगा 6 लड़का के ब्याह कर ले कहाँ से आ रहे
1: हो। अच्छा आपकी विदा कहे भाई दी?
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
1: वही
0: में वही थी
1: बेटा
0: नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी में आई थी। अच्छा इसके पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी?
0: हाँ ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से आई थी।
1: अच्छा बैलगाड़ी से कैसा लगा तो आपको विदा हो रही आपकी और

0: बेलई गाड़ी से होती पहले बता सवाई की होती अमाची का। पहले यहाँ वाहन कहाँ थे और चा तक नहीं जाते खेलार तक नहीं जाते। अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी।
1: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है
0: अगर तुम्हें कारस देव में जाना है तो गाड़ी
1: से जाना है। सही बात है। तो फिर जब आप पैदा हो गए इतने आई तो ससुराल में खूब मिलो आपको।
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आपके में नंबर की है।
0: हम दूसरे नंबर नंदन दो
1: नंदन की शादी हुई।
0: हाँ।
1: अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हती।
1: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके एटे का रस में वही मतलब कंकन छूटा
0: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहते फिर चले गए।
1: खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई।
0: खिचड़ी बनाई थी
1: तो आपने खुद बनाई थी।
0: नहीं बना पाई थी हमने जेठानी ने बना दी थी।
1: अच्छा।
0: और चमचा से डरवा दी थी
1: नाम होगा
0: तो और द्वारे में और डरवा दे।
1: अच्छा और डरवा दे। जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर कहा करने मिलो तो
0: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
1: देने उल्टो नहीं हो रहा
0: पहले देता ही है अबे भी दे था मोरन के।
1: हाँ।
0: जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहु से सास लेते हुए भाई से।
1: अच्छा।
0: चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ एक रख दे लेकिन वो सास ले और दार तो और पे रखत बहु।
1: अच्छा।
0: तो बेबी सास ले।
1: अच्छा
0: जी की सास ना हो तो जेठानी
1: में तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते आपके समय में खुलती
0: नहीं हमारे समय में नहीं
1: जूड़ा नहीं खुलते। अच्छा आपकी
0: जो छोड़ा खोलते जो
1: छोड़ा खोलते
0: जो छोड़ा
1: भी पैसा
0: साँच खोल सकती है
1: कम हाथ हो तो मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास कछु महत हो जाए।
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: छोटे आते से कछु
1: नहीं आते। आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिलकर कराती या लड़ाई होती।
0: जेठानी के संग कराते लड़ाई का
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप।
0: नहीं हमारी नहीं हुई जेठानी
1: सास से
0: ना सास से भाई कहो ना
1: काय नहीं होती। आप सीधी हती के दो जने
0: दो एक से आते मिलके कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा ऐसे सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और सासरी में का काम होती
0: है खेती होता ही रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ थी रात ऐसे खेती होती तो रात चलाते रहते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती
0: है। चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से।
1: कितने बजे उठाती
0: है। चार बजे उठ जाते चार बजे से पी सकते सो पाँच छह किलो नाच पीस लेते।
1: पाँच छह किलो रोज पीस लेते।
0: हाँ रोज इतना ही जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकते।
0: चार बजे से भी पी सकती
1: संगे पी सकती
0: ना कमू संगे कमू अलग अलग पी
1: सकती। अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम
0: फिर गोबर मोबर डालते।
1: कितनी गाय भैंस आती
0: है आपके। दस बारह गैया
1: आती। अच्छा
0: गोबर मोबर डालते झाड़ा झूठी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर
0: हाँ फिर कुआ पे आठ बजे तक निकल जाते चलाते दिन भर।
1: अच्छा वो हाथ से बहाने आते
0: नहीं बैलेंस से घड़िया नहीं आती लोहे सब भाई चलाते रहते कब हम सास जेठानी चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपने कहा होगी। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है। हमारा छह लड़का।
1: छह लड़का और लड़की।
0: लड़की नहीं है।
1: लड़की नहीं है। तो
0: आपने
1: लड़का
0: को तो पढ़ाओ। हाँ पढ़ा मैं परेशानी हती से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा
0: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी। तो अब सबकी शादी हुई।
0: हाँ सबकी हो गई सब नाती ना दुल्हन की हो गई।
1: अच्छा नातीन की भी हो। कितने नाती हैं।
0: छह नाती हैं छह नातने हैं।
1: अच्छा तो बिल्कुल आती को मतलब बिल्कुल बड़ा परिवार है।
0: हाँ तो छह लड़का हैं तो दो दो हैं सबके।
1: अच्छा,
0: और एक के चार हैं बड़े के तीन मोड़ी हैं मोड़ी तो आप बरोबर हो गई तीन ना मोड़ी के दो मोड़ी मोड़ा होगा एक के छोटी एक के मोड़ा होगा एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है अभी मोड़ा है वो।
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको अच्छा लगा थी तीती भान पे और सब जगह आ जाते हैं तो और अच्छा लगा थी है ना। तो आप सुवाटा नहीं खेलती हो।
0: मैं
1: कैसा खेलती आप अपनी
0: सुवा तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस फिर खेल
1: गाना गाते। अब वो भी
0: ना
1: भूल गई
0: भूलने
1: नहीं आते याद करने आते।

0: बढ़िया, आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
1: 20 साल से ज्यादा हो गई।
0: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे है आपकी नौकरी लग गई?
1: आंगनबाड़ी में हमारी लग गई थी।
0: कैसा लग गई थी? मतलब
1: पहले उनने इन्हें 4 जन्म के कागज दे थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लग गए। सो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने। हमें नहीं करने सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सका। इन्हें 350 में लगते, हमें 200 रुपया।
0: सो
1: फिर हम इनके ससुर बोले ला जाओ हम दे दे वो करें, तो मैं 2-4 रुपये ली नाच खावे के लाने बज का कर। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 रुपये ली नाच, पानी लगे आते इनको। सो फिर लगे रहे इनके, तो पानी तो अभी अभी छोड़ दो हमने बना तो नहीं लगे। जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इनसे पानी भर इनको मतलब खावे पीवे की परेशानी से, कि अब जैसे नहीं तो जो दे तो सकते खावे, नहीं करते तो को दे रहे।
0: सही बात है,
1: तो को ना कर।
0: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको?
1: आप 5,000 हो गए ये 2-3 महीना, नहीं 2,500। फिर 350 आए हमारे, फिर 1500
0: आए, तो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
1: हम जो खेती किसानी सीखी आंगनबाड़ी कर ली, फिर सोचा
0: आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
1: चाहिए? पहले तो महत्व देखो, आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे हैं?
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए।
1: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
0: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
1: है,
0: ड्रेस मिल रही,
1: लेकिन अब मिल रही पहले कहाँ मिल रही?
0: हाँ पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के लाने पढ़ाए चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
1: और का
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे चाहती अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
1: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी, नातने नाती पढ़े, हाँ सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो को हुआ बड़ी बड़ी हो गई, सब 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो ब्याह कर दो नातन की।
0: बहुत बढ़िया,
1: आप मन को पढ़ दो, अब दो नाती पढ़ रहे के।
0: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

अपनी बात है। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जाना है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है वो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है वो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई है कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी।

देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगत हैंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका बासन करने आए हो, घर को काम ही देखने आए हो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपनो समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसा लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाना हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पता है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो अब अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार और चला चला सुनो आप ये गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, चूंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में

ज़्यादा पानी गिर गया है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लिखने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: को बेटी की आत्मा कहती है अपनी माँ से और बाप से, क्या कहती है?
1: कि ये कुमा तू चमन और मैं उसकी

0: अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है,
1: वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

0: आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा,
1: रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर,
2: मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

लगी, अगर मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र कपड़े नहीं होते तब भी मैं फटे पहनकर अपना लेती, और कहा अपना लेती कठिन, अपना लेती कठिन, कंठ को की गली बिलखे ले ही मौत के।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को वो भी

0: जायज के, क्योंकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं। तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपनी खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार। राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, मतलब जरूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, चूंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं।
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में, या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार, नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है। तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है, लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
1: जी
0: विधि
1: सर,
0: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए।
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60 बाई 60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60 बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना
1: जी
0: चाहिए।
1: सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई है ना, उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है, MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज

0: करूंगा, आधार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल। अभी क्या होगा, जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल,

0: M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है, जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज़्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही है, जिसको हम पीथियम एपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजेब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाई भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वेरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है, वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र विहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी खो। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते एक बढ़िया से गीत खो, और गीत के बाद फिर सुने अपन ये स्टोरी खो। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। आगे।

देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है दोस्तों। ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चला गया, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंग कर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

देखो दोस्तों, जापान सब्जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब्जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों, यही गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जावे को समय हो गया है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर

0: 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लड़का स्कूल पहुंचा दो, ताकि रोटी टपन लगा दो। घर बारी को तो समझा दो, लड़का स्कूल पहुंचा दो, ताकि

0: हेलो।
1: नमस्कार नमस्कार, परिचय दें अपना।
0: जी नमस्कार सर।
1: कैसे हैं आप?
0: पर हम ठीक है सर, आप सुना कैसे हैं?
1: हम बढ़िया हैं। हमारे श्रोताओं का अपना परिचय दें।
0: सर मैं दर्पण कुमार सैनी, ग्राम है तहसील मिले जय रामपुर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: दर्पण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया हैं?
0: और बढ़िया एकदम मस्त है, स्वस्थ है। वृंदावन में आपके प्रोग्राम लगातार सुन रहे हैं।
1: कैसा लग रहा है प्रोग्राम? अभी तो चालू हुआ है। खैर, आप तो कब से जुड़े हुए हैं रेडियो के साथ?
0: सर हम जो सर काफी ज्यादा, लेकिन आज कॉल हमारी पहली बार लगी है।
1: हाँ, आज वही आप, इसलिए हमने आपका परिचय
0: जी सर,
1: पूछा।
0: जी सर, बाकी सर आपके माध्यम से सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम
1: जी
0: भी।
1: जी जी मैं हूँ आरजे हर्ष, आप जानते ही होंगे अगर सुनते होंगे कुछ दिनों से आप।
0: जी सर जी सर जी सर
1: जी,
0: जी सर,
1: कहाँ पर हैं अभी आप, क्या कर रहे हैं?
0: सर हम लॉ के स्टूडेंट हैं।
1: अच्छा, लॉ के
0: जी
1: स्टूडेंट हैं
0: सर
1: आप। कौन कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से
0: सर
1: कर रहे हैं?
0: रामपुर, सर रामपुर एमजेपी यूनिवर्सिटी बरेली।
1: अच्छा, तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर फिल्म का नाम है हीर रांझा,
1: जी
0: सर गीत का नाम है रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। सर
1: अच्छा, तो ये किसी को समर्पण करना चाहते हैं कि खुद को ही सुनना चाहते हैं?
0: दोस्तों
1: जी
0: का नाम है सर, तौफीक भाई मंसूरी, सफू भाई मंसूरी, लही कैमन, सकाश भाई।
1: अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, ये गीत सुनना चाहते हैं?
0: जी सर बहुत ही प्यारा गाना आता है।
1: जी जी जी जी और अभी आप क्या, अभी एडमिशन फर्स्ट ईयर वगैरह में हैं या फिर क्या?
0: लास्ट ईयर हमारा ये सर।
1: अच्छा, लास्ट ईयर है। तो
0: जी
1: इसके
0: सर जी सर
1: लॉ के बाद आप मतलब बीए एलएलबी कर रहे थे क्या, केवल लॉ कर रहे थे सिर्फ?
0: सर, साथ में प्रैक्टिस चल रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट
1: अच्छा अच्छा
0: कोर्ट रामपुर।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे दिन
0: जी
1: चल
0: सर
1: रहे हैं, माता रानी हमारे श्रोताओं पे अच्छी कृपा बनाए रखें। अच्छा, विचार उनमें उत्पन्न हो और हमारा रेडियो ऐसे ही सुनते रहें, हमसे जुड़े रहें। और दर्पण जी, हम ले चलते हैं हम आपको आपके पसंदीदा गीत की ओर। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत
0: आपका
1: बहुत धन्यवाद।

0: आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए ताकि वो समझ सके।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोल्डन रोड मथुरा से हर्ष भैया को करता हूँ शारदा नमस्कार।
0: आज नई आवाज के साथ आप जुड़ चुके हैं और मैं हूँ आरजे समर्थ आपके साथ। हेलो
1: हेलो हर्ष भैया, कैसी है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, हमारी आवाज आपसे ठीक से पहुंच नहीं पा रही है।
0: जी, आज आप नई आवाज के साथ जुड़ चुके हैं और मैं हूं आरजे समर्थ आपके साथ।
1: जी, ये नई आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत ही खुशी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे दो दो आरजे से बात हो रही है। पहले हर्ष जी से बातचीत हुई, अब आपसे वार्तालाप हो रही है।

0: कैसे हैं आप? थोड़ा हमारे
1: बहुत अच्छा हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप इस रेडियो बुंदेलखंड ओरछा पे आते रहें और हम श्रोताओं से बातचीत करते रहें। बहुत ही अच्छा लगता है जब नए नए आरजे से वार्तालाप होती है।
0: कहाँ हो आप, क्या चल रहा है अभी?
1: मैं इस वक्त मथुरा वृंदावन में हूँ और घर पर रहते हुए रेडियो से जुड़ा रहता हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करने का शौकीन हूँ मैं और जब बातचीत होती है तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। हमारी फरमाइश के गीत सुनाए जाते हैं जब रेडियो पर।
0: कब से जुड़े हैं आप रेडियो बुंदेलखंड से?
1: काफी दिन हो गया है मुझे, करीब 6-7 साल हो गए हैं बुंदेलखंड ओरछा से जुड़े हुए।
0: नवरात्रि में कैसा क्या चल रहा है माहौल?
1: नवरात्रि का इस वक्त बहुत ही भक्तिमय आस्था पूर्वक वातावरण बना हुआ है। आस्था श्रद्धा भक्तिमय देवी की आराधना स्थिति बनना की जा रही है और जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं। देवी माँ की भक्तिमय वातावरण के साथ संगीत बजाए जा रहे हैं। 9 दिनों तक ये 9 देवी की रूप में पूजा की जा रही है और कन्याओं का भी भोजन कराया जाता है, उन्हें जिमाया जाता है मान सम्मान के साथ में।
0: चलो तो माता रानी की ऐसी कृपा हमारे सभी श्रोताओं और चित्रवासियों पर बनी रहे। और आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। माता रानी सबका कल्याण करे। और आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी और रफी लता जी ने गीत को गाया है, तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर।
0: अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे और
1: बहुत ही अच्छा प्यारा मस्ती भरा गीत है। अरे बुंदेलखंड ओरछा पर तो जब सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा।
0: तो आप जरूर बताइए हमारा गीत सुनकर के आपको कैसा लगा और हमारे आपके बीच में कैसा रहा और रेडियो बुंदेलखंड कितने।
1: जी आशा और उम्मीद करते हैं कि यूं ही आप हमसे बातचीत करते रहेंगे, समय समय पर आते रहेंगे। आप हो गए हर्ष जी, हो गए वर्षा जी, हो गई माता दीन भैया हैं और मनीष जी हैं, ये सब लोगों से वार्तालाप करके बहुत ही अच्छा लगता है।
2: नमस्कार शारदा प्रसाद जी, मैं आरजे हर्ष आपका स्वागत करता हूँ आज के खास कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
2: आज हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ी है एक नई आवाज श्रोताओं। आज हमारे साथ हैं आरजे समर्थ नायक जी, जिन्होंने आज माइक पकड़ा है और आप सभी बताइएगा जरूर कार्यक्रम खत्म होने के बाद।
1: जी जी अवश्य इसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे कि हमारे जो नए आरजे हैं उनसे बातचीत और उनकी आवाज रेडियो बुंदेलखंड पर कैसी लगी और उनकी भाषा शैली स्टाइल जो बात करने का है वो कैसा लगा श्रोताओं को, हम अवश्य अपनी टिप्पणी व्यक्त करेंगे।
0: चलो तो बढ़ते हैं आपके गीत के साथ और सुनाऊं थे आपको मन पसंद गीत।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आप दोनों महानुभावों को सादर करता हूँ। नमस्कार।

0: कैसे हैं आज? आप एक नई आवाज के साथ जुड़े हैं और मैं हूं आरजे समर्थ नायक।
1: सर बढ़िया है सर। अनूप कुमार राजपूत, ग्राम उपरेखा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं सर।
0: और कैसे हैं आप? क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो बढ़िया है और खेत में है और शीशों की छांव में बैठे हैं और गाने सुन रहे हैं।
0: फसल असल कट गई आपकी?
1: जी फसल असल कट गई है, तिली भती थे ना, कट गई है।
0: जी जी जी कैसी पैदावार है, कैसी निकली?
1: अभी हलाई नहीं है, कटी भरी रखी है अभी।
0: अच्छा, तो क्या सुनना पसंद करेंगे आज आप नई आवाज के साथ? आज की फरमाइश क्या है आपकी?
1: जी फरमाइश,
0: जी जी तो श्रोताओं तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम बजाते हैं उनके पसंद का गीत। बढ़ते हैं गीत की ओर। नमस्कार।

0: हेलो, वापस
1: नहीं
0: आ चुके हैं एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगले कॉलर, तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे उनका परिचय लेते हैं। हेलो
1: नमस्कार
0: हेलो
1: सर
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी। मैं शकुर भाई मंसूरी, ग्राम ऐचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप कैसे हैं? जी
0: मैं तो बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है आपका?
1: हेलो,
0: हमारी आवाज आपको कैसी आ रही है?
1: इनकी
0: तो नेटवर्क इश्यू हो सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे मैं ठीक करवाऊंगा अभी।
1: बस सही आ रही है, वैसे तो सही आ रही है।
0: तो आप जुड़े हैं एक नई आवाज के साथ और मैं हूं आरजे समर्थ नायक आपके साथ। तो क्या सुनना पसंद करेंगे आज आप?
1: जी, बिल्ला नंबर 786 की एक कव्वाली है, भर
0: जी,
1: दे झोली मेरी या मोहम्मद।
0: अदनाम स्वामी की आवाज में।
1: जी,
0: जी
1: कादर
0: जी
1: खान गाते हैं सर।
0: जी, तो लीजिए बजरंगी भाईजान पिक्चर का गाना अदनाम स्वामी की आवाज में करते हैं प्रस्तुत।
1: जी, और कुछ सर दोस्त हैं? हेलो
0: जी,
1: हाँ, लयिक मंसूरी,
0: जी,
1: दर्पण कुमार सैनी,
0: जी,
1: सखावत हुसैन मंसूरी और तौफीक मास्टर टेलर।
0: जी, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4।
1: ठीक है, धन्यवाद।
2: बिगड़ी आए मैं भी
3: तो मंदिर जाओ।

की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसको किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामत के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: साथ कार्यक्रम। हेलो फरमाइश में, और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है और जरूर बताओ चाहे आप कि आपको कार्यक्रम आज को हम कैसा लगा। हेलो
1: भैया
0: नमस्कार, भैया कैसे हैं?
1: नमस्कार भैया, बढ़िया है। राजेश यादव बोल रहे हैं, बस स्टैंड रेड जिला में होगा। बढ़िया भैया, ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश। बढ़िया लग रहा हूँ, बढ़िया है। टफिन दुकानदार चल रही, माँ देवी चल रही। काफी दिन हो गए, 5 साल से बोल रहे हैं। सुना दो, मारी मारी फिर बेचारी गई याद कन्हैया की, इस तरह ही जी आवाज में। बिल्कुल भैया, जय माता की। सब जाने
2: चारों धाम की यात्रा करते हैं, घर में मौज मस्ती से रहते हैं, लेकिन जिस गौ माता की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, अरे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि विष्णु भगवान ने आज तोलो बांधत छोड़त है। अगर गैया में 3 किलो 4 किलो दूध निकलत हुई ना, तो खूंटा से ना छूटे।

0: ओ जितना छोटा जात बा गैया सो बीसन लठ चहोरत।
1: जिस दिन वो एक बूंद दूध नहीं देगी उसे लाठी देके दो किलोमीटर दूर निकाल देते हैं। लेकिन प्यार तो प्यार है, चाहे पिता का प्यार हो चाहे माता का प्यार हो, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, वो होता है सच्चा प्यार। वो माँ है, हमने एक दिन उससे माँ कहा तो वो नहीं भूली कि हमारे बेटे हैं, हमारी संतान है, हमारी औलाद है। देखिए आप, 20 लाठी देके हमने निकाल दिया लेकिन अरे लौट लौट के आए दुआरे ममता जा गऊ मैया की। वो ममता दिखा दी, शाम को आ गई आपके दरवाजे और फिर रमाती है बेटा मैं आ गई हूं, मुझे अंदर कर लूं।

के घर घर बगर होत ते पेला, अब तो कहूं टपला नहीं। अरे घर घर बगर होत ते पेला, अब तो कहूं टपला नहीं। अरे पंखा तरे परत खुद छत पे पांदे कांभे से गईया। चारो गर्मी चाहे बस कारो, आज हम मकान बनाते हैं, बढ़िया बेडरूम बनाते हैं, बढ़िया एक बैठक बनाते हैं, बढ़िया किचन बनाते हैं, बढ़िया बाथरूम बनाते हैं, जिसमें हम पसार के सपर सके। लेकिन दो खाट की जांगा उगऊ माता खिलाने नहीं कहूं, चाहे गांव में हो चाहे शहर में।

मारे भूखन प्यासन सूख गई हैं, तन पे मांस बचो नहीं है। और एक बात, ये 101 रुपये का पुरस्कार भैया सीताराम यादव हमारे अभिन्न अंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया सीताराम का।

अगर पंडित जी से कहें कि महाराज ये गौदान स्वीकार कर लीजिए, तो पंडित जी कहें देखो जजमान, जो कछु दक्षिणा हो वो हमें दे दो, बाकी जो तुम ही रखो।

बहुत लंबा है लेकिन एक अंतराव और। आज हमने उस व्यवस्था के लिए गौ माता को घर से बाहर कर दिया है, लेकिन हुआ क्या? अरे घटना

0: là thành công em.
1: जुड़ चुके हैं एक और कॉलर महाराष्ट्र से मोहन ठाकुर जी, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं मोहन जी?
2: बहुत बढ़िया है सर जी, अभी तो खेत में है, भैंसा चरा रहे हैं और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। नवरात्र का कार्यक्रम चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को सुबह पूजा अर्चना होती है तो बहुत बढ़िया दिल लग रहा है, अच्छा लग रहा भी है।
1: अब तो वो माता के 9 दिन है तो वो चारों तरफ वातावरण भी वैसा ही रहता है, चारों तरफ गीत बजते रहते हैं, डीजे बजते रहते।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा डेकोरेशन है, इतना पूछो मत कि वो गणपति बाप्पा का। और ये दिन बहुत ज्यादा बड़े धूमधाम से, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माता रानी की असीम कृपा हमारे श्रोताओं पे पड़ी रहे। और कैसी क्या भैंसे हैं, कैसी का लग रही है, अच्छा खासा लग रहा है?
2: बहुत बहुत बढ़िया सर जी, एकदम सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: अच्छा तो बढ़िया है वो। और कैसी बढ़िया फैट वैट भी अच्छी जा रही है आपकी? तो
2: बात है बहुत ही है, एकदम कोई कोई किसी बात की टेंशन नहीं, दिक्कत नहीं है, एकदम खुशी और मंगल से है।
1: घर के लाने कितने का दूध काढ़ लेते हैं अपन खावे के लाने?
2: एक दिन का सुबह और शाम का, सुबह 10 लीटर शाम को 10 लीटर, 20 लीटर जाता है, 700-800 रुपए का होता है, रोज गिरता है अपना अपना।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो है क्या अपनों बिजनेस होगा जो बढ़िया जाते हैं चुका बिजनेस होता। बताओ।
2: हाँ सर जी।
1: तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं बताओ, हम कौन सा गाना बजाएं आपके लिए?
2: आज मराठी सुना दीजिए, और मैं बहुत पहले एक दो बार सुना हूँ लेकिन और सुनना चाहता हूँ। और एक गीत है माहिर की साड़ी है फिल्म का नाम।
1: जी जी जी।
2: और उसमें है आई अम्बे जगदम्बे भावा साड़ी करते मी धावा।
1: अच्छा,
2: आई अम्बे जगदम्बे। अच्छा, हल्का अच्छा, कुमल
1: हल्का कुमल।
2: हाँ और इक्रम, हाँ इक्रम गोखले है उसमें, बड़े सुपरस्टार, अजिंक्य के देवल।
1: अच्छा अच्छा।
2: और सब बढ़िया चल रहा है?
1: हेलो।
2: हाँ सर जी।
1: और सब बढ़िया चल रहा है?
2: बहुत ही बढ़िया चल रहा है सर जी, पूछो मत, बहुत अच्छे हाल है, एकदम बिल्कुल अच्छे है, और खुशी से मंगल से अच्छे है। हाँ वही है, जय अम्बे
1: जगदम्बे। क्रांति वीर पिक्चर को है जो गाना? तो
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, मराठी है मराठी है, हे अम्बे, और वही गीत है मराठी में से है।
1: अच्छा
2: हाँ, अलका कुमार पे चित्र गीत हुआ है सर जी।
1: तो चलो देखते हैं, बजाते हैं, आपको बता दूं कि जो ही है वो कि नहीं है।
2: कोई बात नहीं, आप चला दो, आप कैसा भी चलन दो, कोई बात नहीं, नाना पाटेकर का होगा तो भी चलाओ, क्या फर्क गिर रहा है, चला दो।
1: चलो हम बजा रहे हैं, आप जो इनको तो नहीं है अनुराधा पोडवाल को?
2: कोई बात नहीं जी, बिल्कुल चला दीजिए सर।

0: उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो योगेश जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
1: आ रहे हैं भैया।
0: जी बताइए, कैसे हैं?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं। योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा
0: जी
1: छत्तीसगढ़
0: जी जी योगेश जी, बहुत बढ़िया। और कैसा क्या चल रहा है अपना?
1: से। बस सब ठीक है भैया, खेती बाड़ी काम चल रहा है अपना।
0: अच्छा, कहाँ बोए थे अपन?
1: अभी तो धान लगाए हैं, धान निकल रहे हैं।
0: अच्छा, निकाल ले के निकल गई?
1: नहीं, निकल रहे हैं भैया, थोड़ा सा लेट हो गया था इस बार।
0: अच्छा, फिर
1: जी
0: कैसी कहा? अगर निकाल ले तो फिर रेट पता पड़ गया अपन को कैसी कहा जा रहा है?
1: जी अब कई कई तरह तो कटाई भी शुरू हो गए।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो हवे का खेत ही में होगी अपन है?
1: जी क्या
0: कौन कौन है अपने संगे?
1: बोले भैया?
0: कौन कौन है अपने साथ?
1: मेरे साथ
0: बताओ।
1: तो हमारा अभी फिलहाल बोल रहे हैं,
0: जी
1: क्या घर में बोल रहे हैं?
0: नहीं, अभी खेत में आप अकेले हैं यार, कोई और भी साथ में
1: नहीं,
0: है?
1: और भी लोग हैं।
0: तो चलिए, सबको हमारी तरफ से राम राम बोलियो
1: जी
0: और
1: जी
0: आपको स्वागत है बहुत बहुत। और आज अपन कौन सा गीत सुने?
1: सुहाग मूवी से सुनवा देंगे।
0: जी, सुहाग मूवी से हम बिल्कुल आपके लिए पसंद का गीत बजाएंगे। और आप
1: जी
0: यूं ही बने रहें, रेडियो बुंदेल के साथ जुड़े रहें
1: जी
0: और
1: जी
0: चलन
1: जी
0: है गीत की तरफ अपन। और
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया, धन्यवाद।

0: चलाते हैं, उनसे बात कराते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार भैया, नमस्कार, कैसे हैं हजार खान जी आप?
1: जी। सही है, नमस्कार।
0: साथियों, हजार खान जी हमारे साथ अकबरपुर से जुड़े हुए हैं, और बताइए कैसा क्या चल रहा है?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिवान, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या चल रहा है अभी, क्या कर रहे हैं? बाहर हैं, घर पर हैं?
1: अभी घर पर हैं, बस मेहनती लगे हुए हैं। भट्टा टूटा हुआ है,
0: अच्छा, भुट्टा वगैरह टूट गया है
1: टूट रहा हुआ अभी जी,
0: तो अपन लगाए हैं सीखा।
1: लगाया था ना।
0: जी, और
1: और
0: हाँ,
1: मौसम कैसे चल रहा है आपको?
0: मौसम तो इधर पे बढ़ गया, धूप निकली, चिलचिलाट भाई, क्या बताएं आपको। और ऐसी
1: जी
0: जैसी गर्मी पड़त है, तो वैसी उमस सी भी है।
1: जी हमारे भी गर्मी पड़ा था।
0: हाँ भाई, वही तो गर्मी ऐसी पड़ रही है, और देखो सर्दियों को मौसम आ गया।
1: जी
0: अबे तो का पहले के टाइम पे तो जा टेंशन, सर्दी चलन लगती, ठंड लगन लगती, अब तो ऐसो
1: जी
0: वातावरण में ऐसो बदलाव होने लगो के क्या बताएं।
1: जी मौसम, हवाएं चल रही हैं, हल्के फुल्के बादल हो रहे हैं।
0: हाँ, और आज क्या फरमाइश है, आज आपकी क्या सुन्नत
1: और
0: रही है? आप,
1: आप कैसे हैं?
0: हम बहुत स्वस्थ हैं, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की कृपा से, माता रानी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, सब
1: जी
0: जय
1: जी
0: मंगल में
1: आपको
0: हैं।
1: नौ दुर्गों की हार्दिक हार्दिक
0: जी,
1: बधाई।
0: आपको भी, आपको भी। और आज क्या फरमाइश है, आज आपकी क्या सुनना चाहेंगे?
1: संग्राम का सुनवा देना कोई शो भी
0: संग्राम पिक्चर का गाना सुनना चाहेंगे, तो
1: जी।
0: हम आपके लाने बजाते हैं भीगी हुई रात, मगर कुमार सानू कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में संग्राम पिक्चर का ये गाना, तो बढ़ते हैं अपन गीत की ओर। धन्यवाद
1: जी
0: अपन,
1: धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, रेडियो बुंदेलखंड से बोल रहे हैं
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ से हैं आप?
1: जी। मैं निवाड़ी जिले के गढ़वा गांव से बोल रहा हूँ
0: करगुआ,
1: जी। हम आपका कार्यक्रम प्रतिदिन सुनते हैं,
0: बहुत
1: हमारे
0: अच्छे।
1: परिवार में सभी लोग आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
0: जी। और कब से सुन रहे हैं आप अपना रेडियो बुंदेलखंड?
1: करीब करीब साले हो गए हैं। हमारे पहले दादाजी सुनते थे, फिर पिताजी सुनते थे, अब हम सुन रहे हैं।
0: जी। और आप कौन सा गाना पसंद करेंगे आज?
1: जी हम पसंद करेंगे वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां।
0: और क्या चल रहा है अभी? आप पढ़ाई कर रहे हैं या कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं?
1: जी, हम कृषि क्षेत्र में काम करते हैं।
0: और क्या कोई बिजनेस है अलग से अपना?
1: खेत पे अपना रेडियो ले जाते हैं, वहीं पर अपना आपका कार्यक्रम सुनते हैं
0: जी।
1: जी।
0: और पढ़ाई कहाँ तक की है आपने?
1: पढ़ाई में वार भी की है मैंने।
0: जी। और क्या अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहेंगे? हेलो,
1: हेलो
0: क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है क्या?
1: जी, पहुंच रही है आपके पास।
0: जी। तो फिर सुनाऊं थे आपको अपना पसंदीदा गीत। सचिन देव बर्मन, वहां कौन है तेरा।

उचित निपटाव करने अपन को, पंडालों में साफ सफाई रखें और पानी बचाएं और पेड़ पौधन को की देखभाल करवें। याद रखिए, प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा जीवन में खुशहाली रहेगी। तो इस नवरात्रि माता रानी की भक्ति के साथ माता रानी की सेवा भी करें। और तो श्रोताओं, आज को प्यारो भरो जो गाना अपन चला भी बारे हैं और होगा है को समय अपन को जावे को, तो आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद जो आप अपनों कीमती समय निकाल कर हमारे संगे जुड़त हैं और अपनी फरमाइशें इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं। जात जात बस एक छोटी सी बात याद रखो, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, अपने बुंदेलखंड की संस्कृति और परंपरा को सहेज के रखो और अपने पर्यावरण को भी ध्यान रखो। और मैं हूँ आपको आरजे हर्ष और दिल से लेते हैं आपसे विदा और मिले एक नई बातचीत और नए नगमों के साथ, आपके नए फरमाइशों के साथ। तब तक अपनों और अपने घरवारों को ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो।

सुनत रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4। और बढ़ते हैं अपन और जा गीत की ओर, और बता जो जो हमारे संगे आज जुड़े थे आज हमारी नए आरजी, उनको आपको और उनको उनकी आवाज़ कैसी लगी, काहे कि अब नए नए हैंगे तो थोड़ो आज गलती मलती भई हो तो भी माफ़ करियो। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे यहाँ नंबर पे 92 19 20 77 49 पे आप और अपना फीडबैक अपने विचार अपने दे सकत के आज आपको कार्यक्रम कैसो लगो, गाना कैसे लगे, गीत कैसे लगे और हमारे नए आरजे की आवाज़ कैसी लगी। तो करत हैंगे कार्यक्रम को समापन और मतलब ख़त्म करत हैं और बढ़त हैं जो हमारे जो आखिरी कॉलर रहते हैं उनकी फरमाइश की तरफ। तो अपनों ख्याल रखो और खुश रहो।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं वीर अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। दोस्तों अभी अपन सब जने सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब दोस्तों हेलो फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हो गया है, अब समय हो गया है अपने अगले कार्यक्रम को, जिसमें सुने अपन पुराने हिंदी गीतन खुले गीतन को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में।

जे भई है हम सबको आनंदी भई है, हम सबको आनंदी भई है, ऐसे अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

मुंह दिखा जी केरे लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भइए ऐसे तो केरे के गगरी उतार दिखाए

से हम दिखवा सके रे।

0: लेकिन हम आओ के वो है तुम कह रही के दो बेने हैं हमें नेक में जो नहीं जाना मालूम का जाने क्या वो है
1: प्राणन से प्यारी भो जाई ध्यान से सुनियो बात हमारी ध्यान से सुनियो बात हमारी काद हो गगरी

0: बिटिया हमेशा खुश रहे और दोनों को लन की शान बढ़ावे जो ही है एकदम से नेग बिचाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जाना चितुलारो कुल को है उजियारो खुशी रहे जो राज दुलारो तो कुल को है उजियारो
2: उतार दैया।

0: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष कार्यक्रम
1: आजीविका में
2: बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, आजीविका की बात जहाँ पर आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आजीविका है क्या। लेकिन हमने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि आजीविका यानी कि हमारी।
2: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, और आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी आय को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं।
1: जी,
2: और कैसे हमारे श्रोता साथी, चूंकि बुंदेलखंड में हम आप देख रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं अपना स्वयं का धंधा करके।
1: जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि दूसरों की मजदूरी करने से अच्छी है कि हम अपना खुद का एक छोटा सा धंधा लगाएं, यानी कि व्यवसाय लगाएं, जिससे हमें दो पैसे की आमदनी होगी।
2: बिल्कुल वर्षा जी, और बहुत सारे जब हम लोगों के पास मिलने जाते हैं तो बहुत सारी हमें सफल कहानी हमें वहाँ पे मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे सफल लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने रेडियो बुंदेलखंड पर आजीविका का कार्यक्रम सुनकर अपने खुद का व्यवसाय को शुरुआत की है। तो ऐसे लोगों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उनकी सफल कहानियों को बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पहले ही बताया था, सतीश साहू जिन्होंने अपना दूसरों के यहाँ नौकरी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, तो एक ना एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आय को बढ़ाया है, दूसरों के अपेक्षा अपने घर की आय को और बढ़ोतरी की है।
1: जी हाँ, जैसा कि साथियों उन्होंने बताया था कि हम जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे, वो ऐसे में उन्हें क्या क्या परेशानी होती थी। एक तो टाइम से नहीं पहुँचते थे, घर टाइम से नहीं आ पाते थे, और दूसरी चीज उन्हें तनख्वाह जो मिलती थी, जो पैसा महीने का दिया जाता था, वो समय पे नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर वो पैसा हमें समय पे ना मिले तो किसी काम का नहीं होता है हमारे।
2: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, जब तक हमें स्वयं का व्यवसाय, चाहे वो हम दो घंटे अपने लिए क्यों नहीं दें, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आप देखते हैं कि 12-24 घंटे में से 12 घंटे दूसरों के मजदूरी करने के बाद हमें तनख्वाह वो 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए इस तरीके का देते हैं। हम उनके लिए जब मेहनत करते हैं, क्यों ना हम अपने लिए, खुद के लिए इतनी सारी मेहनत करें कि हम सफलता को हम चलते चले जाएंगे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग हमें नाम से पहचानेंगे।
1: बिल्कुल, और सफल जब ही होंगे जब आप सोच लेंगे कि हमें करना क्या है आखिर, और जब आप करने का निश्चय कर लेंगे तो फिर हमें आप जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
2: बिल्कुल वर्षा जी, और इस कार्यक्रम में हम दोस्तों को बात कराएंगे हीरालाल कोरी जी से, जिनसे बात करेंगे कि उन्होंने तौलिया का व्यवसाय, चूंकि बहुत सारे हमारे श्रोता साथी सोचते होंगे कि कुछ जातिगत जो व्यवसाय रहते हैं वो उनकी ही जाति के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी जाति बात से हटकर उस व्यवसाय को सोचना चाहिए।
1: यानी कि आपके कहने का मतलब है मनीष जी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि मटका बनाना, तौलिया बनाना, ये बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको उस काम को करने में रुचि है तो आप बिल्कुल ये सोच हटा दीजिए जातिवाद की कि ये यही जाति का करेगा, हम भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर एक मटका बनाना जानते हैं और हम कुम्हार नहीं है, तो क्या हम अपनी रुचि को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उससे दो पैसे नहीं कमा सकते हैं? क्या हम अपनी रुचि को आगे ले जाकर लोगों को ये बताएं कि जातिवाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल वर्षा जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तौलिया का व्यवसाय।

और आप देखते हैं कि मऊ रानीपुर में सबसे ज्यादा तौलिया का व्यवसाय होता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अपने आसपास में तो निवाड़ी में बहुत ज्यादा तौलिया का व्यवसाय चलता है। तो ऐसे में किस तरीके से हमारे युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इस चर्चा को सुनने से पहले हम एक गीत के साथ हम आपको मनोरंजन कराते हैं और गीत के बाद आपको सीधा हम निवाड़ी ले चलेंगे और जहां पर हीरा लाल जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो आइए इसी क्रम में एक हम गीत को सुन लेते हैं।

0: तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: अपना परिचय दें पहले।
2: हीरा लाल पूरी कालपुरा निवाड़ी।
1: अच्छा, तो हीरा लाल जी आप क्या करते हैं इस समय पे?
2: हम तौलिया के काम करते हैं, क्या मशीने लगाए हुए हैं पावर लूम।
1: अच्छा, तो जैसे शुरुआत बात करें अगर, तो आप तौलिया कैसे, कहाँ से इसका माल लाते हैं, कच्चा माल कहाँ से?
2: कच्चा माल आता हमारा रानीपुर से। जैसे धागा है वो तो 100 रुपए किलो भी आता है, 150 भी आता है, हर प्रकार का धागा खरीद के फिर बेलन भी भरवाते हैं।
1: तो इन सब में कितना खर्चा आ जाता है?
2: मैं आप बेलन भराई जैसे 5,000 के आसपास तो बेलन भर जाता है, और फिर धागा उसके बुनने के लिए, माल बनाने के लिए वो अलग खरीदना पड़ता है।
1: तो ये सारा सामान आपको वहीं से
2: रानीपुर मिल जाता है?
1: अच्छा, फिर वहाँ से लाने में कैसा क्या आप
2: लाते हैं? क्या जैसे इधर से गाड़ी जाती है, गाड़ी में आता है माल,
1: गाड़ी में आता है, फिर वो धागा यहाँ लाने के बाद आप क्या करते हैं?
2: उसका धागा ले जाने के बाद पावर लूम पे जैसे बेलन रख दिया और धागा हाथ से काड़ी भरती है।
1: अच्छा,
2: उसके बाद बस पावर लूम पे काम करो, कपड़ा बनने लगता है।
1: कपड़ा बनने कितने लोगों को आप लगाए हुए हैं?
2: हम जैसे एक मजदूर लगाए हुए, खुद करते हैं 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए आप नहीं करते तो कितने लोगों की जरूरत पड़ती है?
2: जैसे 2 लोगों की पड़ेगी, जैसे 3 पावर लूम लगाए हुए हैं, घर का धंधा है जी।
1: अच्छा,
2: ज्यादा तो लगाए नहीं हुए हैं, जैसे ज्यादा लगाओ मशीन है तो ज्यादा मजदूर लगेगा।
1: अच्छा,
2: जैसे 3 पावर लूम लगे हैं तो 2 मजदूर चल जाते हैं उसमें।
1: तो एक दिन में कितना आप बना लेते हैं तौलिया की बात करें तो?
2: एक दिन में तौलिया बन जाती है 40,
1: एक मशीन पे
2: 40 तौलिया बनती है,
1: पूरी कंप्लीट हो जाती है?
2: कंप्लीट हो जाती
1: है। अच्छा, और एक महीने में
2: आप इसका हिसाब लगा लो, जैसे 40 लगी एक दिन में तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो पर डे का है, थोड़ा कभी लाइट भी नहीं रहे, कहीं कुछ वजह है, हिसाब से प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता।
1: और जो मशीन आप लगाए हैं उसमें लाइट का कैसा क्या कनेक्शन आपने करवाया?
2: हमारा कनेक्शन है 3 फेज का कनेक्शन कराई।
1: तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे आप कनेक्शन भी करें वो भी बिल भरना पड़ता है?
2: हाँ, क्यों नहीं मिलता, वो तो इतना तो मिल ही जाता है परिवार चलाने।
1: अच्छा, अपना परिवार चलाने, वो जो व्यक्ति आपके यहाँ लगा हुआ है मजदूर,
2: उसका भी परिवार चल जाता है।
1: कितना उसको देते हैं?
2: उसको जैसे उसका हो जाता है 6 दिन में 1,500 के आसपास का।
1: अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे तौलिया बनाने से पहले?
2: तौलिया बनाने के से पहले क्या, जैसे पहले तो हम जैसे कोई दुकान टेलरिंग की खोले थे मार्केट में, सिलाई का काम करते थे। फिर दिमाग में आया कि पावर लूम लगा लो घर में, तो पावर लूम लगा लिए।
1: अच्छा, तो मशीन आप जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे? पावर लूम
2: जी, मशीन ऐसा है कि जैसे इधर ही इधर व्यक्ति रहते हैं, कोई नहीं करता है धंधा, कोई कुछ और बदल देता है, इधर ही इधर मशीनें मिल जाती हैं।
1: अच्छा, नहीं तो अगर जैसे किसी को खरीदना हो जो मशीनें तो कहाँ?
2: तो ये टांडा वगैरह जाना पड़ेगा, टांडा में है।
1: ये कोई समूह के द्वारा मिलती है या फिर?
2: हाँ, ये समूह के द्वारा ही मिलती है। अभी रानीपुर में जो है यूपी में, आपको सरकार ने दी है 64 की मशीनें बड़ी बड़ी, और मकान बनाने के लिए लगाने के लिए व्यवस्था पैसा दिया है, 2.5-3 लाख रुपया दिया है। समूह द्वारा भी मिलता है, सरकार भी दे देती है।
1: तो समूह द्वारा अगर कोई लगाना चाहे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे?
2: हाँ, समूह द्वारा
1: सरकार पैसा देती
2: है। हाँ, उससे ज्यादा मशीनें मिल जाएंगे, उसको पूंजी भी मिल जाएगी, वो घर का बिजनेस करने लगेगा।
1: अच्छा, अब आपकी मार्केटिंग की बात अगर करें तो आपका बाजार कहाँ होता है, आप कैसे इसको बाजार में सेल करते हैं?
2: हम लोगों की मार्केट ये ऐसा है कि व्यापारी बने हुए हैं बाहर के, तदरी से गांठे पैक होकर चली जाती है तैयार होकर माल,
1: पूरी कंप्लीट या फिर?
2: पूरी कंप्लीट, मैं फ्रेश फिनिशिंग होके तैयार।
1: अच्छा,
2: पक्की बन जाती है, बाहर जाता है, राजस्थान जाता है, भोपाल चला जाए, बहुत जगह जाता माल तो।
1: अच्छा, तो आपको महीने में कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है?
2: महीने में वो ये 15-20 हजार रुपए की कमाई परिवार चलाने लगभग।
1: अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं?
2: बस इसके अलावा क्या है, वही काम है।
1: अच्छा, कितने घंटे आप देते हैं इस काम में?
2: मैं पूरा लगा रहते हैं वो तो, 10 घंटे करीब काम देना पड़ता है।
1: जैसे सुबह से उठे तो सीधा
2: बस उसी में, वही काम है और है क्या।
1: अच्छा, अगर कोई और लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसको क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए?
2: और कोई लगाना चाहे तो सावधानी क्या, उसको पावर लूम चलाना सीखना पड़ेगा, जैसे नहीं जानता है तो उसको सभी सीखना पड़ेगा, तो धागे का काम है।
1: अच्छा,
2: तैयारी का काम है।
1: आपकी बात अगर करें तो आपने कहाँ से सीखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी?
2: ट्रेनिंग क्या, हम इस काम को नहीं जानते थे, जैसे पावर लूम लगा लिए, कारीगर लोग कर रहे हैं काम, सुधारना भी नहीं जानते थे मशीन, तो वो धीरे धीरे कारीगर लोग चलाए, हम भी सीख गए।
1: बस पहले कारीगर लगाया,
2: कारीगर लगाया, उन्होंने किया काम, जैसे बिगड़ गई मशीन तो मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री को देखा ये किस प्रकार।

0: देखते देखते अपन भी होशियार हो गए।
1: अच्छा, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसी क्या क्या परेशानी आई?
0: बहुत सी परेशानी आई थी हमको, जैसे उसमें कुछ जानते ही नहीं थे, थोड़ा भी कुछ बिगड़े या थोड़ा चमड़ा टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो मिस्त्री को पकड़ते थे, उसको पैसा देना पड़ता था।
1: अच्छा, और अब अगर बिगड़ जाए तो?
0: अब तो खुद कर लेते हैं,
1: सब खुद कर लेते हैं। अच्छा, सब समझ हो गई है?
0: सब समझ हो गई है।
1: अच्छा, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसको जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी?
0: जगह के लिए शायद कोई दो मशीन लगाना पड़े या तीन लगाए छह लगाए, उस हिसाब से जगह लगती है। जैसे 12x12 के कमरे में दो मशीनें लगती है, समझ लो आप, और ज्यादा मशीनें तो उस हिसाब से जगह चाहिए।
1: तो अभी आप दो मशीनें लगाए?
0: हम तीन लगाए हुए।
1: और अगर कोई खुले माल में आपसे लेना चाहे, जैसे एक तौलिया है, दो या तीन चार पाँच, ऐसे में आप
0: दे देते हैं?
1: कितने की एक तौलिया जाती है?
0: जैसे तौलिया कपे के ऊपर है, 12 रुपए की भी, 15 की भी है, 35 की भी है, ये तो वेरायटी अलग अलग
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आपने इस बातचीत को सुना और जो हीरा लाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं तौलिया का व्यवसाय करके, तो हमें भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए।
1: हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तौलिये का ही व्यवसाय करना चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको किसी भी काम को करने में अच्छी लगन हो, अच्छी पकड़ हो, आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम खुद का होना चाहिए, तो आप वो जरूर करें और हो सकता है कि उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और मदद करने के लिए चूंकि आपको लगता है कि हमें परेशानी आ रही है ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो ट्रेनिंग्स इन सारे व्यवसायों के लिए कराती हैं। तो आप जुड़िएगा हमसे और बात करिएगा और इस व्यवसाय संबंधी बातचीत करने के लिए हम आपको फोन नंबर दे देते हैं। फोन नंबर है हमारा 94-25-14-17-26।
1: श्रोता साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बुंदेलखंड बार बार आजीविका से जुड़ी हुई बातों पर क्यों जोर दे रहा है, तो आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड पर जाते हैं नुक्कड़ नाटक या नैरो कास्टिंग के माध्यम से, तो देख रहे हैं कि अपने गांव में जितनी जनसंख्या पहले थी अब वो नहीं है। हुआ क्या है कि वो लोग पलायन कर गए हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, आखिर हम लोग कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने से कितनी समस्या होती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी ही करें, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी नौकरी करें या फिर अपना खुद का धंधा करें या रोजगार लगाएं कुछ भी। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय लगाइए और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाइए।
0: बिल्कुल वर्षा जी, आप एक बात हम इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि हम आप देखते हैं कि जब हम दूसरों की मजदूरी करने के लिए यानी यहाँ से हम पलायन करते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो शिक्षा पर, उनकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि बच्चों पर सबसे खासा असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मजदूरी का बेटा मजदूरी करेगा, यानी मजदूर करने वाला व्यक्ति का बेटा मजदूरी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजदूर करने वाले का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मजदूर करने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सारे जो रहते हैं मजदूर करने वाले लोग आगे चलकर बड़ा अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अपने पढ़ाई का स्तर जो रहता है, हम और आप देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो, अब हम बुंदेलखंड को देखें तो बच्चे जो मजदूर करने के लिए चले जाते हैं साथ में, तो उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम हो जाता है, तो अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत सारी समस्या आती है।
1: जी हाँ साथियों, तो इसीलिए हमारी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो आजीविका कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पर हमें जरूर अपने सुझाव और फीडबैक दें।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम और छतगेला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है, लेकिन आप अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो या फिर आपने भी इससे कुछ सीख ली हो, अपने जीवन में

0: भी अगर बदलाव किया है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी सबको सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल, तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: मुझे हक है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4। और हमारे साथ हैं हमारे रेडियो साथी
1: मनीष और साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुझे हक है। क्योंकि मुझे हक कार्यक्रम जैसा ही नाम है वैसा ही इसका काम है। क्योंकि मुझे हक है, मुझे
0: समझ
1: हक
0: रहे हैं,
1: है जानने का, मुझे
0: मुझे
1: हक
0: हक
1: है
0: है
1: पहचानने
0: पहचानने
1: का,
0: का, और
1: और
0: मुझे
1: मुझे
0: हक
1: हक
0: है
1: है
0: जो मेरे लिए योजनाएं चल रही हैं
1: जी
0: उनका लाभ लेने का।
1: बिल्कुल वर्षा और सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम मुझे हक में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और श्रोता साथियों को फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे
0: जी
1: साथियों
0: जी
1: के
0: जी
1: साथ। क्योंकि काफी दिनों से मुझे यह कार्यक्रम में हम योजना पर बात नहीं कर रहे थे, और हम आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी, आप उनके मन में एक ही सवाल चलता है कि हमें साहब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है, सरकार हम सबके लिए, हम बेरोजगार साथियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती रहती है हमेशा समय समय पर, जिनका लाभ हमें मिल जाए और जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा कुटीर उद्योग ही टाइप कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम अपना आय चला सकें।
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि हम और आप ये देखते हैं कि जब आजीविका की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लग जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रोजगार हम करेंगे। और साथ में ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है हमारे साथियों के मन में चलती है कि क्या काश हमारा ये रोजगार हम जो लगा रहे हैं, जो हम व्यवसाय डालने जा रहे हैं, वो व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इसके लिए एक उपाय है, हमारे पास उपाय है, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जा रहे हैं। यदि आपके पास रुचि है, यदि आपके पास हुनर है, आप ये देखते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपनी हुनर बताते हैं कि साहब हमें ये काम बहुत अच्छा आता है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग रहते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसके कारीगर आप स्वयं रहते हैं। लेकिन समस्या आती है कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय नहीं डाल पाते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं।
0: अरे अरे मनीष जी, अभी आप सारी बातें बता देंगे तो हमारे श्रोता साथियों को पता कैसे चलेगा कि आज इस मुझे हक है कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि आज श्रोताओं मुझे हक है कार्यक्रम में हमें जानने का हक है कि हम सुनेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी कि किस तरह से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कैसे हमारे बेरोजगार साथी जो हैं वो इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं।
1: लेकिन वर्षा, हमें लगता है कि एक गीत संगीत हो जाए
0: अरे
1: तो
0: मनीष जी, आप बस सुनते ही नहीं हैं, यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है।
1: जी
0: हम वही बताने वाले हैं कि हम जानकारी लेंगे, साथ में कुछ गीतों के साथ मनोरंजन भी करेंगे और कुछ हम और आप मिलके अपने श्रोताओं को कुछ और नई जानकारी भी देंगे ताकि हमारे साथी कहीं भटके ना और इस योजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो बात आप कर रहे थे कि यहाँ पर एक गीत सुनना है, बिल्कुल चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत।
2: लड़का बारे बदाम मांग रहे सुन सुन के।

रेडियो अपनी बातें। रेडियो बुंदेलखंड पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये मधुर सा गीत और जिसे गा रहे थे पन्ना लाल अहरवार और उनके साथी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम जो योजना के बारे में जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, उस योजना के बारे में जानते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा मनीष जी के पास।

0: कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं उद्योग विभाग के अधिकारी। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि उद्योग विभाग की ओर से कौन सी संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उसका लाभ लिया जाता है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिएगा।
1: जी, मेरा नाम हितेश ठाकड़ है और मैं उद्योग विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ टीकमगढ़ में।
0: तो सर उद्योग विभाग की तरफ से कौन सी योजना संचालित की जा रही है?
1: वर्तमान समय में शासन की चार योजनाएं हैं जो उद्योग विभाग संचालित की जाती हैं। चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत आपको 18 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा आपको न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें राशि की बात करें तो इसमें 50,000 से लेकर 10,00,000 तक की राशि आपको आपके व्यवसाय सेवा तथा उद्योग के पर्पज से आपको दी जाएगी। इसके अलावा हमारे आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना है तथा इसका प्रिंट आउट हमारे जिला कार्यालय टीकमगढ़ में आपको जमा करेंगे। इसको
0: ये मध्य प्रदेश में का मूल निवासी
1: जी, इसके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास 5वीं की अंक सूची होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त एक आवेदनकर्ता के पास अपने पास होने चाहिए।
0: अच्छा, उस फॉर्म में जब फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि कार्य योजना किस तरीके की आपको पूछा जाता है?
1: जी, इसमें क्या है, एक कार्य योजना का प्रारूप होता है, दो पन्ने का ये प्रारूप है। वो आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि आवेदक द्वारा ये भरी जाए, लेकिन किंतु कई आवेदक इसे नहीं भर पाते हैं, इसलिए ये कार्य योजना हम अपने विभाग में अपने ऑफिस में भरते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कार्य योजना ना भर पाए तो आप हमारे विभाग में संपर्क करके पहले वो कार्य योजना बनवाएं, फिर ऑनलाइन उसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी आवेदन में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पता, और आप किस बैंक के लिए आवेदन कर रहे हो उसको आपको आवेदन में ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जिससे जब आप आवेदन करोगे और जमा करोगे तो हम अपने विभाग से उसी बैंक के लिए स्वीकृत करके आपका आवेदन प्रेषित करेंगे।
0: अच्छा, ये सर उद्योग विभाग जब स्वीकृत भेजता है अपना डेटा तो कौन कौन से बैंकों को जाता है? कैसे?
1: जी, ये इसमें सभी प्रकार की राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक हैं, निजी क्षेत्र की बैंक हैं, वो भी शामिल हैं। लेकिन इसमें एक क्लॉज रहता है कि CGTMSE करके जो प्राइवेट बैंक इसमें कवर नहीं होती हैं, इसीलिए प्राइवेट बैंक आमतौर पर ये केस नहीं करती हैं। जबकि जो शासन की जो सभी समस्त बैंक है, ग्रामीण बैंक से लेके कैनरा बैंक, SBI बैंक, जो भी समस्त शासकीय बैंक है, वो सब इस योजना के अंतर्गत अपने अपने काम करती हैं।
0: अच्छा, तो ये चीज और बताइए, जैसे उसका आवेदन भर गया है, उसने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है, तो कितने दिन बाद उनको ये राशि प्रदान हो जाएगी, क्या इसकी प्रक्रिया क्या रहती है?
1: जी, जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूं, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और जो भी योजना हमारे विभाग से चल रही है, वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कवर है। इसके अंतर्गत अधिकतम 30 दिवस के अंदर हमें उस पर एक्शन लेना होता है और बैंक को प्रेषित करना होता है। अतः आप जब जिस दिनांक से आवेदन जमा करते हो उसके अगले 30 दिवस के अंदर हम आपके आवेदन पर निर्णय लेते हैं, इसे स्वीकार किया जाए या आगे भेजा जाए, तथा इसकी सूचना आपको मोबाइल से भी दी जाती है। और इसमें लगभग न्यूनतम 30 दिवस आप समझिए।
0: बहुत सारे सर हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग जब हम फील्ड पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया था, उद्योग विभाग में जमा भी कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारी स्वीकृति नहीं आई है, तो क्या उसका कारण रहता है?
1: जी, कारण इसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं मिसमैच हो गया हो आपका फॉर्म हार्ड कॉपी, जैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे आपको लगता है कि आपको बहुत दिन हो चुके हैं तो आप मोबाइल से या व्यक्तिगत संपर्क से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, आपकी समस्या जो भी उसका निवारण किया जाएगा। जी,
0: और इसके बाद जब बैंक के पास जाता है तो बैंक कितने दिन में उसको स्वीकृत कर देती है?
1: देखिए, बैंक के लिए एक डेडलाइन तो फिक्स नहीं है, लेकिन आमतौर पर बैंक अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ये कर देता है। अब कितना वो टाइम लेते हैं वो हर बैंक का अलग अलग रहता है, इसलिए इसकी जानकारी बैंक वाले ही बता पाएंगे।
0: अच्छा, इसमें ये रहता होगा कि आवेदक जो है यदि बैंक से वो कर्ज लिए हो तो क्या उसकी स्वीकृति हो जाएगी?
1: जी जी, बिल्कुल नहीं, आवेदक को बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसी बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाएगा उससे पहले आपका एक नोटिस लगेगा कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, तो आवेदक अगर डिफॉल्टर है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा, वो अपात्र हो जाता है।
0: और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर बैंक भी स्वीकृत कर देता है तो क्या डायरेक्टली उसके पैसा एक खाते में जाता है कि जो वो सामान खरीदना चाहता है उसके?
1: जी, इसके बारे में भी हमारे विभाग ने प्रावधान किया है, कुछ अनियमितताओं को लेकर इसका एक समाधान ढूंढा गया है कि जो आप कोटेशन लगाओगे, जैसे मान के चलिए आप जनरल स्टोर खोल रहे हो, उसके के लिए आपने सामान लाओगे कहीं ना कहीं से, तो वहां का आप कोटेशन लगाओगे, बिल लगाओगे, तो जब बैंक में वो बिल जमा करोगे आप, तब आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। जब वितरण की बारी आएगी तो जो वितरण की राशि होगी वो सामने वाले के खाते में जाएगी जहां आपने कोटेशन लगाया है। आपको एक सेल लेटर मिलेगा जिससे आप उस सेल लेटर को वहां लेके जाइए और वो आपको सामान दे देंगे उतने मूल्य का।
0: अच्छा,
1: तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है। आपको नगद राशि उतने सामान की नहीं मिलेगी।
0: अच्छा,
1: आपको जो अन्य खर्चे हैं जैसे काउंटर फर्नीचर या जो आपका सीसी लिमिट चलता है बैंक में, उसके लिए आपको नगद राशि मिलेगी, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा।
0: अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी ने उद्योग विभाग से अपना लोन पास करवाया है और बैंक ने भी लोन पास कर दिया है, तो क्या उसको पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी कि कुछ उद्योग विभाग उसमें छूट देगा?
1: जी जी, इसके लिए देखो शासन ने जो हमारे जो बेरोजगार युवा भाई हैं उनको प्रोत्साहन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें हर योजना में अलग अलग चार स्कीमें, मैं उसका अलग अलग बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात करें तो इसमें जो सामान्य पुरुष है उसको 15%, इसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, मान के लिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है, विकलांग है, अल्पसंख्यक है और महिला है, इन सभी को 30% परियोजना लागत का 30% शासन की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। आपको जो राशि आपकी है उसमें से 30% घटा के आपको बाकी रुपए बैंक को जमा करना है, जो 30% वो आपको प्रोत्साहन रूप आपके कार्य के लिए दी जाती है।
0: और सर ये कितने दिन में उसको जमा करना पड़ता
1: है? देखिए ये तो ये बैंक का मैटर है, लेकिन इसमें फिर भी मैं बता देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है। इसमें अधिकतम 7 वर्ष रहता है और मिनिमम 6 माह रहता है। इस बीच की अवधि में बैंक आपकी किस्त बनाएगी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको पूछ के, तो अधिकतम 7 वर्ष रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, 7 वर्ष के अंदर आपको चुकाना है।
0: और यदि बैंक से वो लोन लेकर वो फेल हो जाता है अपने उद्योग लगाने के बाद, तो क्या उसकी क्या हो रहा है?
1: देखिए फेल होने पर पहली बात तो जो आप जिसके लिए उद्योग लगा रहे हो पर या जिसके लिए आप मुझे ऋण ले रहे हो वही उसकी गारंटी होता है पहली बात। तो अगर आप फेल होते तो वही जब्त होगा सबसे पहले, आपने दुकान लगाई तो उसका सामान, कोई भी चीज आप लगाई तो उसका सामान, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब आप फेल होते हो या डिफॉल्टर होते हो, इसके लिए भारत शासन की एक स्कीम है जिसे CGTMSE करके बोलते हैं, उसमें क्या है सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें रजिस्टर होती हैं। मान के चलो अनफॉर्चुनेटली कोई उद्यमी डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक अपना जो डिफॉल्ट किया हुआ पैसा है वो वहां से कवर करती है।
0: जी जी,
1: ये ऐसा प्रावधान किया गया है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: और यदि किस्त उसकी चूक जाती है तो क्या रहता है?
1: जी, किस्त चूकने पर पेनल्टी लगती है, उनका कुछ परसेंटेज रहता है बैंक का, 0.2 या 0.5 जो परसेंटेज रहता है, इस हिसाब से पेनल्टी लगती है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें उद्योग विभाग का कोई रोल नहीं रहता?
1: जी नहीं, उद्योग विभाग का रोल यहाँ तक सीमित है कि वो आप जब आवेदन करोगे आपके आवेदन को स्वीकृत करेगा, बैंक प्रेषित करेगा, अगर बैंक आपका लोन वितरित कर देता है तो

0: बाकी जो एलिजिबल मार्जिन मनी है जो सब्सिडी जैसे बोलते हैं वो हम रिलीज कर देंगे।
1: अच्छा जी, इसमें कोई गारंटर रहता है?
0: जी गारंटर देखो बेसिकली शासन की जो गाइडलाइन है उसमें गारंटर का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों के हमारे संज्ञान में आया है कि उनके कुछ इंटरनल सर्कुलर है जिसके तहत उन्हें गारंटर की आवश्यकता होती है, तो ये हर बैंक का अलग अलग रहता है, तो ये वही अच्छे से बता पाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आपने जो जानकारी सुनी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जानकारी आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है?
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि ये जानकारी उन युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं। आप घर पे ही अपना स्वरोजगार लगा सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम लागत में ऐसे ऐसे टिकाऊ रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सस्ते रोजगार हैं जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सवाल आता है कि अब पैसे कहाँ से, तो धाकड़ जी ने हमारे बता भी दिया है कि जो पैसे वो उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है, वो उद्योग विभाग स्वीकृत कर देता है आपके आपके परियोजना को और वो परियोजना बैंक में जाकर स्वीकृत हो जाती है और आपको एक आसान तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाता है और आप अपने स्वयं का जो आपने सोच रखा है उस व्यवसाय को करने में आपको मदद मिलती है।
0: मनीष जी, यहाँ पर हमारे जो श्रोता साथी हैं थोड़ा सा नर्वस तब हो जाते हैं जब वो कहीं प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल नहीं होता है। तो अभी जैसा कि धाकड़ जी ने बताया है कि कई बार क्या होता है कि फाइल यहाँ वहाँ हो जाती है और हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो जिस चीज को कहते हैं कि बार बार उस चीज के बारे में हम पूछते रहें। मान लीजिए अगर किसी को हमने पैसा दिया है या कोई चीज हमने दी है तो हम उससे बार बार पूछते रहते ना कि भैया वो चीज ऐसी थी, वो कहाँ गई, या फिर हमने आपको वो पैसा दिया था वो अब कब लौटा रहे हैं, क्या कैसा। तो उस चीज की स्थिति जानने के लिए हम उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं, उसको फोन करते हैं या जाते हैं उसके पास। तो ऐसे ही जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमें उसका फॉलो अप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप गए, आपने इस योजना की जानकारी ली, इसका फॉर्म डाला और बैंक में या उद्योग विभाग में जाके आपने सबमिट किया और उसके बाद आके आप फ्री होकर घर पे बैठ गए। अब आप सोचेंगे कि उद्योग विभाग वाले खुद आएंगे और वो हमसे पूछेंगे कि भैया आपने किसके लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है, आप भी एक दो बार वहां पे जाइए और पूछिए उनसे कि साहब हमने जो फाइल दी थी उसका क्या हुआ, कब तक आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके एक तो क्या होगा कि उद्योग विभाग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे क्योंकि जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान बढ़ने से आसानी से लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो आपको कहीं से भी कैसे भी करके किसी न किसी योजना से जोड़ दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा।
1: एक हम अपने श्रोता साथियों को सलाह और देना चाहते हैं, जहाँ तक कि मेरा अनुभव कहता है कि हमारे श्रोता साथी अपने मन में जो आपकी इच्छा है कि हमें इस व्यवसाय को करना है, उसके लिए आप जो सरकार द्वारा, जैसे हमने स्वरोजगार योजना के बारे में बताया है, उसकी सबसे पहले वहां जाकर संबंधित अधिकारी के पास पहले जो गाइडलाइन रहती है उसको पढ़ लेना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सभी को लोन उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए भी कुछ कैटेगरी बनाई जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितना पैसा, कितना छूट, ये सारी परियोजना में लिखा रहता है और उसी हिसाब से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमें पढ़ लिख कर पूर्ण रूप से तैयार होकर तब हमें एक डिमांड करनी चाहिए, तब हमें मांग करनी चाहिए, तब हमें आसान तरीके से वो ऋण आपको उपलब्ध हो जाएगा और आसान तरीके से आप अपने व्यवसाय लगाने में आप सफल होंगे।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है, इस बात पे हम भी थोड़ा सा और कहना चाहेंगे क्योंकि कई बार होता है जब हम बैंकों में जाते हैं तो बिना पढ़े ही हम किसी भी कागज पे दस्तखत कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने में समय व्यस्त करेंगे तो वो हमारा समय बेकार जाएगा या हम कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हम ऐसी किसी योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ते हैं, तो उस योजना के बारे में आपको एक एक जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। आप उस योजना को अच्छी तरीके से पढ़िए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका समय वहां पे बेकार जाने वाला है।

0: आप उसकी जानकारी ले लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। और जहां तक बात होती है पैसे की, तो मनीष जी देखिए, जब हम एक बार ठान लेते हैं कि हमें ये व्यवसाय या कुटीर उद्योग कुछ भी खोलना है, अपना स्वयं का व्यवसाय करना है, पैसा सिर्फ एक माध्यम होता है, ना कि रुकावट बनता है। तो आप सारी जो तालमेल होती है, जो भी और व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनको एक साथ रखिए। पहले पैसा एक बाद की चीज होता है, पैसे आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, किसी ना किसी योजना से आपको जोड़ ही दिया जाएगा, अगर आपके पास लगन अच्छी है, मेहनत अच्छी है, आप वाकई में चाहते हैं कि आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो चीज, वो होती है प्लानिंग, मार्केटिंग और आपका लगन। आप कितनी लगन से उस काम को करने में लग रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और इसी के साथ, क्योंकि अब हमारे घड़ी और हमारा कार्यक्रम अब हमें इजाजत नहीं देता है कि आगे भी आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातचीत भी हो गई है और योजना के बारे में श्रोता साथियों को पता भी चल गया है। तो हमें आशा है कि अगले कार्यक्रम में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमें कॉल लगाकर पूछेंगे, जानकारी लेंगे या फिर अपने सुझाव जरूर देंगे कि हमने इस योजना के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाकर हमने फॉलोअप किया, हमने बातचीत की। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम सुनकर हमारे श्रोता साथी जरूर इस बात पर बिल्कुल अमल रहेंगे कि हमें इस योजना का लाभ लेना है।
0: बिल्कुल मनीष जी, और क्योंकि देखिए घड़ी की सुइयां भी अब हमसे कह रही हैं कि चलिए आपका समय हो गया है, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी हमारा आने ही वाला है। तो श्रोताओं, हम चलते हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनमें अगर आपको लगता है कि और बेहतरीन तरीके से कैसे इन्हें डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इन्हें आप सबके लिए ला सकते हैं, आप सबके लिए कैसे ये एक लाभदायक कार्यक्रम बना सकते हैं हम, उसके लिए आप हमें सुझाव जरूर दें। और सुझाव देने के लिए हमारा नंबर वही है।
1: 92 19 20 77 49
0: तो अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई भी बारे हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। जी हाँ सखियों, आप तो जानती हेंगी कि अम्मा के चौके में अपन और जो बातचीत को करत हेंगे वह बातचीत अपने किचन से जुड़ी भई तो होती हैगी, एक साथ में रेसिपी से जुड़ी भई होती हैगी कि कोनो बढ़िया सी रेसिपी बनावो अपन और सीखत हेंगे ये कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सब में ध्यान देवे वाली बात जा होती है कि अपन साफ सफाई के ऊपर भी विशेष तौर से ध्यान दे देंगे कि साफ सफाई काय जरूरी है अपने लाने, उन चीजों को भी तना गौर अपन और करत हेंगे। और कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगत है जब अपनी सखियां जुड़ के और अपने संगे अच्छी तरह से कार्यक्रम को सुनती हेंगी, साथ ही में फीडबैक भी कार्यक्रम के देती हेंगी। अपने संगे बहुत सारी ऐसी सखियां हेंगी, अब तो आपको बता दे मैं कि अपनी सखियां इतनी होशियार हो गई हेंगी कि ऑनलाइन के माध्यम से भी रेडियो बुंदेलखंड को सुनन लगी हेंगी। तो हम उन सब सखियन को बहुत ही शुक्रगुजार हेंगे और उनको धन्यवाद करते हेंगे कि वे अपने संगे जुड़ती हेंगी, साथ ही में अपन को फीडबैक भी देती हेंगी। ये कार्यक्रम में आगे आपको बता देवे कि जो भी हमारे श्रोता साथी कार्यक्रम को सुनत हेंगे या इको फीडबैक हम तक पहुँचाऊ देंगे, तो आपसे भी एक अनुरोध हम करवो चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोनो अच्छी सी रेसिपी या फिर कोनो भी बढ़िया सी बात अपने मन में चल रही हैगी कि अरे जो चीज़ हम बहुत अच्छी तरह से बना लेते हेंगे और इको हमें रेडियो पे ज़रूर बताना चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक होकर फ़ोन लगा सकती हैंगी। जी हाँ सखियों, और आज के कार्यक्रम में अपन मीनाक्षी राय जी की किचन में चलत हेंगे, उनकी रसोई घर में चलत हेंगे और देखत हेंगे साफ सफाई के माहौल को देखत भय भी अपन को का ऐसो बता रही हेंगी जी के बारे में अपन उनसे जानवी के लाने गए हेंगे उनकी किचन में। तो आज हम चलत हेंगे मीनाक्षी राय जी की किचन झांसी में, तो आपको सुनवात है उन्हीं की मुख जुबानी से कि वे अपनी किचन में का बना रही हेंगे और चलत हेंगे मीनाक्षी जी के पास।

0: सबसे पहले तो नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी राय।
0: अच्छा मीनाक्षी जी, आज हम आपकी किचन में आए हैं और जानना चाहते हैं कि आज आप क्या बना रही हैं।
1: मैं आज चने की दाल और सोयाबीन के कबाब बना रही हूँ।
0: अच्छा कबाब। वाह, कबाब सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है। इसकी थोड़ा सा आप कैसे बनाती हैं इसके बारे में हमें बताइए।
1: चने की दाल को आप एक कटोरी लेकर
0: जी
1: और उसको रात भर सोख कर दीजिए।
0: भिगो के रखना
1: हाँ,
0: है।
1: भिगो कर रखना है। और न्यूट्रिला अगर चाहे तो न्यूट्रिला की जो बड़ियां मिलती हैं वो
0: हाँ
1: बड़ियों को आप रात में भी भिगा के रख सकते हैं। नहीं तो जब आप कुकर में डालो तो कुकर में चने की दाल 2-3 पानी धोने के
0: जी
1: बाद रात भर भीगी हुई दाल उसको डालकर उतना पानी डालेंगे जितनी दाल उसमें भीग जाए, ज्यादा
0: हाँ
1: पानी नहीं होगा। उसी में न्यूट्रिला वाले सोयाबीन की बड़ियां डालकर और उनमें सारे खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची और गरम मसाला, नमक, मिर्च और दालचीनी, जावित्री, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसको आप बॉयल कर लें, 4-5 सीटी लगा लें। जब उसे बिल्कुल मिल जाए उसके बाद उसको निकाल कर उसको मिक्सी में पीस लेंगे।
0: अच्छा, ये जो आपने इसमें गरम मसाला इस्तेमाल किया वो खड़ा गरम मसाला
1: हाँ, खड़ा
0: था।
1: मसाला, थोड़े थोड़े गर्म मसाले डालें जिससे उनका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है, उनकी जो खुशबू है वो ज्यादा अच्छी पता चलती
0: ज्यादा
1: है।
0: अच्छी पता चलती। और फिर हमने उसको मिक्सी में डाल के,
1: मिक्सी में डाल के जब वो हमने बॉयल करा उसके बाद वो क्योंकि इतना पानी हम डालते हैं कि उसी में मिल जाए,
0: जी
1: ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बहता हुआ हो जाएगा, वो नहीं होगा, बस उतना पानी हो जिसमें मिल जाए।
0: अच्छा, चने की दाल और जो बरी हमने ली थी सोयाबीन की,
1: हाँ,
0: वो दोनों ही हमने
1: दोनों ही बॉयल
0: चार
1: करेंगे,
0: पांच सीटी
1: चार पांच
0: लगा ली।
1: सीटी बॉयल करेंगे
0: अच्छा
1: उसको। बॉयल करने के जब वो ठंडा हो जाए उसको मिक्सी में चला दीजिए
0: ठीक है।
1: और चलाने के बाद उसको निकालेंगे। उसमें थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालते हैं, थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और उसमें महीन महीन प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया ये सब डालकर उसको मिला लेते हैं, बाइंड करेंगे। अगर देखेंगे हम बाइंड करने में अगर नहीं आ रहा है बाइंड करने में तो हम ऐसे भी उन जो उसको रिफाइंड में कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे और रिफाइंड डालने के बाद उसको हम उसी में चलाएंगे काफी, तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। उसके बाद उसकी अगर हम वो बनाते हैं
0: लोई
1: गोली गोली गोल लोई बनाते
0: लोई
1: हैं, कबाब बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सेट हो जाते हैं। और उनको फिर हम सेकते हैं और लहसुन धनिया मिर्ची चटनी के साथ बढ़िया सर्व करिए, ऊपर से चाट मसाला।

0: इस पर क्यों कर दिया बढ़िया।
1: अच्छा इसमें आपने जो चटनी का इस्तेमाल किया, आपने कहा लहसुन धनिया की, तो वो आप कैसे बनाते हैं थोड़ा सा उसके बारे में?
0: धनिया लहसुन अगर हरा धनिया हरा लहसुन हो तो बहुत अच्छी चटनी बनती है हरा धनिया। और आजकल फूल वाला जो धनिया आ रहा है उसमें धनिया और लहसुन की एक आप एक ही बस वो डालेंगे, एक लहसुन का आप हरा वाला डाल दें तो उसमें और हरी मिर्ची, जितना तीखा खाते हो तो ज्यादा मिर्ची डालिए और कम तीखा खाते हो तो कम मिर्ची डालिए, और उसको मिक्सी में मगर बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, जो थोड़ी सी दरबरी दरबरी जो पिसती है ना तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा आता है।
1: अच्छा, क्योंकि वो उसमें ना जो हमारा सिलुड़िया वाली
0: थोड़ा फ्लेवर आ जाता
1: फ्लेवर आ जाता है,
0: क्योंकि अब महिलाएं मोस्टली कायल होने लगी हैं इसलिए तो वो चलती है मिक्सी। वैसे सिलबट्टे पे अगर पीसी जाए तो उसका मजा और अच्छा,
1: बहुत ही अच्छा आता है। और खासतौर से हमने देखा है कि जब हम खेत पे जाते हैं और वहां पे ना तो हमारे पास क्या कहते हैं मिक्सी होती है ना कुछ होती है, एक सिंपल सा पत्थर भी आकर रखा है और उसपे पीस के भी खाते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वो एक अलग ही चीज होती है। इसको बनाते समय जब आप कबाब बनाते हैं तो क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए?
0: बस पानी जो हमने करा है वो कुकर में जो पानी रख रहे हैं उसको हम इतना रखेंगे, ज्यादा पानी नहीं रखेंगे। जनरली क्या है लोगों ने डाला एक उठाया और दो कप ग्लास डाल दिया, नहीं उसको जितनी चने की दाल है उतने ही अगर पानी डालेंगे कि उसी में हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर पानी सुखाने में मुझे बहुत समय लगता।
1: अच्छा,
0: इसलिए
1: ये सावधान।
0: हाँ ये सावधान। और बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मिलाकर हम उसको बाइंड करके उसकी टिक्कियां बना लेते हैं, तब बनेगा अच्छे से, ये तो बाइंड होने में दिक्कत हो।
1: बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा और किचन की साफ सफाई की अगर जहां तक बात करें तो उसमें कैसे क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है?
0: किचन की साफ सफाई हर खाने बनाने के बाद साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है कि कीड़े हो जाना या बहुत चींटियां हो जाना ये सब एक आम बात है। तो क्या है विम का अगर वो है या गर्म पानी से, अब सर्दियों में क्योंकि हम लोग घी का काम बहुत करते हैं तो क्या है गर्म पानी से अगर किचन साफ करें गर्म स्लैब उसकी तो ज्यादा अच्छा साफ हो, और जो विम बार का लिक्विड वगैरह डाल के विम का लिक्विड वगैरह डाल के तब साफ करेंगे स्लैब तो ज्यादा अच्छा साफ हो।
1: अच्छा एक चीज और इसमें याद आती है जो उन महिलाओं के लिए है खासतौर से जो भूल जाती हैं कि रात को सिलेंडर से गैस नहीं बंद करती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: रात को गैस सिलेंडर बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जरा सी सावधानी दुर्घटना घटी वो स्थिति होती है, इसलिए रात में हमें अपना काम सारा खत्म करने के बाद गैस वगैरह साफ ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस रेगुलर रूटीन में नहीं साफ करते हैं तो गैस से लीकेज की प्रॉब्लम होती है और बर्नर जब खराब होते हैं तो गैस ज्यादा भी निकलती है उसमें वो होती है, इसलिए आप रात में काम करिए और बंद कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ी सावधानी
1: जी। हम जो किचन साफ करने के लिए या फिर यूं कहिए कि किचन के बर्तन जो हैं वो साफ करने के लिए जो एक कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े को हम कितनी बार धोना सही रहता है हमें? क्योंकि हम इस्तेमाल तो उसका सफाई के लिए करते हैं लेकिन जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वही गंदा होता है।
0: हाँ ये होता है जनरली
1: होता है।
0: हाँ ये होता है, और ये अच्छी बात है कि काम हो जाने के बाद उसको गर्म पानी से धोकर और अच्छे से साबुन से रगड़कर और उसका उसका गंदगी निकालकर धोकर और निचोड़कर डाल दें जबकि अगले टाइम के लिए वो तैयार हो जाए, पता चला वो गंदा है और अगर वही गंदा है तो फिर दोबारा से जितनी सफाई करी है वो फिर वैसी गंदी है।
1: बिल्कुल सही बात है। अच्छा जब हम किचन में काम करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर से वो जिद करते हैं कि मम्मी हम भी साथ में रहेंगे ये वो, तो क्या उनको किचन में रखना सही रहता है उस टाइम पे?
0: नहीं, छोटे बच्चों को किचन में रखना नहीं चाहिए क्योंकि वो हो सकता है कि हम किचन में कोई काम कर रहे हों और हम ही मुड़ते हैं और कोई चीज झटके से गिर गई तो बच्चों में जल जाएगा बच्चा या कुछ ऐसा हो कि हाथ पैर में लग जाए, इसलिए बच्चों को बिल्कुल किचन में दूर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे कबाब हमें बनाने बताए, साथ में किचन की से जुड़ी हुई भी बातचीत बताई है हमें कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, सिलेंडर को हमेशा काम खत्म होने के बाद बंद कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ और संदेश अगर आप हमारी जो महिलाएं हैं क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा सुन रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: हम तो यही कहेंगे कि आजकल जो सब सफाई से रहें और जो वैसे तो मैंने देखा है गांव में जब लीपा पोती जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है जब काम
1: अच्छा।
0: वो वैसे भी वो करके और सफाई सुथरा से जब काम होता है किचन वो जो चौका लगा हुआ होता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा और वो लीपा पोता हुआ है चौक पूरी हुई है वो जो है वो, इसलिए गाँव की महिलाओं से मेरा विशेष अनुरोध है और आजकल जो चल रहा है कि जो अपनी सफाई पर व्यक्तिगत सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास को साफ रख रहे हैं मगर अपने आप को भी खुद साफ रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: रही अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है,
1: वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते। और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

0: अब आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा,
1: रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर।
0: अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

कहने लगी, अगर मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र कपड़े नहीं होते तब भी मैं फटे पहनकर अपना लेती। और कहा अपना ले।

0: इंतजार
1: और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे हमारे सभी श्रोता साथी सभी सखियां सुन रही हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके से। और अब अपन ने सखियों जानो है गो कबाब बनाबे की विधि की प्रकार की होत हैगी, और अपन जो बातचीत कर रहे थे भी मीनाक्षी जी अपने संगे हती। सो साथियों, हम जानत हैंगे कि हमारी जो बहने हैंगी ग्रामीण क्षेत्र की हों चाहे शहरी क्षेत्र की हों, सबके अंदर कोनो ना कोनो टैलेंट कूट कूट के भरो रहते है गो, है ना, कूट कूट के मतलब बहुत सारो टैलेंट रहते है गो, लेकिन काहे कि उन्हें इतना हिचक रहते हैगी कि भैया हम कैसे बताए सबके सामने के कैसे का बनत है गो। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही में नहीं है, काहे कि आप बलिया हमें फोन लगाओ और हम आपको बताएं बड़े आसान आसान तरीका से कि कैसे आप हमें अपनी विधि बता सकती हैगी। जो अपना नंबर है वो जी पे हमारी सखियां फोन कर सकती हैंगी, व्हाट्सएप कर सकती हैंगी, और साथ ही में अगर आपको हिचक कोनो हो रही हैगी बात करीबे में तो एक वॉइस मैसेज जो होते है वो आप हमें भेज सकती हैंगी। तो फिर का हुई है कि हम आपको इतने से फोन लगा के और आपसे बातचीत कर लेंगे कि अम्मा के चौके में आप कहा बतावो चाह रही हैं। देखो सबके पास अलग अलग आइडिया होते हैं।

जैसे मीनाक्षी जी ने अपन को किचन की साफ सफाई को लेके कछु बातें बताई हैंगी, सो ऐसी ही बातें हमारी और भी बहनन के पास जरूर हुई है। तो बहनों देखो कथ हैंगी ना कि अगर तालाब में पानी भरो रहे और वो पानी निकल ना पावे के तो वो बदबू देर लगत है, गंदो हो जाते है वो। लेकिन वो पानी अगर बहत रहे, एक दूसरे से मिलत रहे, आगे बढ़त रहे, तो वो अच्छो रथ है, शुद्ध रथ है वो। तो कहबे को मतलब है कि ज्ञान कितने को बांटो अपन कम नहीं होते। आपके पास कोनो टैलेंट अगर है वो, खाना बनावे को बेहतरीन तरीका आपके पास है, अगर कोनो रेसिपी आपको बहुत अच्छी आत हैगी, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो अपने बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सारी पहले जो खाना बनाए जाऊते आज भी कितों कितों खत्म हो चले जा रहे हैंगे। तो अगर आपके मन में ऐसी कोनो विधि खटखटा रही हो तो आप हमें भी फोन के माध्यम से खटखटा सकती हैंगी और बता सकती हैंगी कि देखो और हमने जा विधि जानी हैगी और ये विधि से जो है हम अपने सब सखियन को बतावो चाहू थेंगे, तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकती हैं। फिलहाल आपको बता देवे कि अभी कार्यक्रम अम्मा के चौके से जावे को हमारा समय हो रहा है, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की अनुमति हमारी और आपकी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें, मुस्कुरात रहें और सावधानी पूर्वक अपनों और अपने परिवार को ध्यान भी आपको रखने हैं। तो हम चलत हैंगे, नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, चूँकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती बुवी हुई है तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लिखने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है,
1: वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा, रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर। मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में तिलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपनी खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दोगुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या है, बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी

0: तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
1: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
0: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार, नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है। तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है, लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
1: जी जी जी, और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी विधि है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
0: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, चूंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हैं हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
0: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा रखती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई है ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए। अभी यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पर या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पर हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल, और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों?
0: बिल्कुल सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही है, जिसको हम पीथियम पेंटीडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पर कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनको जैप या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी, और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें और हम आगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाए भी हैं, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूँकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
1: जी, और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र विहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। सो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

उन्होंने मड़के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरो सुनो डरो लिलार के बेंदा ले दे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत, अपन सब जन ने सुनो है ये गीत को, आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनते हैं अगले साथी की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग गए लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को आनंद लव है। ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया के बाद आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई हुई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में।

0: छमा छम नाचे लांगुरिया मोरी मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके एक गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भई लांगुरिया को।

गोरी चुनरी भईरे भद रंग लांगुरिया लादे चुनरिया जयपुर की। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। आप दोस्तों ये लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी। सो दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो गया है। सो दोस्तों हमें दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतना ही संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें ये फोन नंबर पे और ये पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92 19 20 77 49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।